नमस्कार, FM 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:58 और 35 सेकंड हो चुके हैं। हमारी आज की सभा आरंभ हो रही है इस मंगल धुन के साथ।

0: एफएम बैंड पर यह आपका अपना आकाशवाणी अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुनेंगे। आइए आज की सभा का आरंभ करते हैं समाचार से जो हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंगतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन

0: मदन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर। ये आपका FM आकाशवाणी अयोध्या का केंद्र है। सुबह के 6:05 हो चुके हैं। आइए आपको ले चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, जहां से अब से लेकर 7:15 तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।

चिंतन। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है, विश्वास वो पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। अब लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण झरोका के अंतर्गत।

लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस कान भाग 206, 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर भाग एक। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस। सुबह 7 से भोले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। पर त्रिवेणी 8:30 से सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज की फनकार आज का सुबह का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा ख्वाजा अहमद अब्बास पर। सुबह 10 पिटारा में उजाले उनकी यादों के कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मिथुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये पहला भाग सुनिएगा। 11 रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 सखी सहेली। इसके अंतर्गत सुनेगा कथा सुधा आभूषण का भाग एक। दूसरा सुनेगा वैश्विक अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस। और इसके अंतर्गत सुनेगा उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का मुंगड़ी वाला मटर का निमोना धनिया वाली मठी। शाम 4 पिटारा में सेहतनामा दांतों की देखभाल इस विषय पर डॉक्टर जयेश चुगे से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा। प्रस्तुत करता है जुबैर खान। शाम 5 छाये गीत 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:30 पर संध्या रंजन।

शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा 7:45 पर स्मृतियों के स्वर। इसके अंतर्गत सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्रीमती अनीता वैसले पटेल से ममता सिंह की बातचीत। हवा महल में रात 8 बजे सुनिएगा प्रहसन इंटरव्यू, लेखन वी एम आनंद और निर्देशन है मुख्तार अहमद का। बजकर 15 मिनट पर चित्रलोक। रात 9 बजे आपके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। रात 9:30 पर आज के फनकार, इसके अंतर्गत सुनिएगा अभिनेत्री नरगिस पर ये कार्यक्रम। रात का 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित होगा। 10 बजे छाएगी, 10:30 पर ढलती जाए रात। और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 206।

अपनी चतुरंगिणी सेना तथा अयोध्या से आए पुरजनों सहित भरत श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की पर्णकुटी के मार्ग पर पैदल अग्रसर हो रहे हैं। मार्ग में मिलने वाले कोल, भील, वानप्रस्थियों तथा विरक्त सन्यासियों से उनका एक ही प्रश्न है, श्री राम का निवास किस वन में है। मार्ग में एक रात्रि के विश्राम के बाद भरत अपने समाज सहित कामदगिरी पर्वत के समीप पहुंचे।

0: श्रोताओं नमस्कार। फिल्म संगीत के इतिहास को पलटे हैं तो आप पाएंगे कि तबला इसमें पूरी चमक के साथ मौजूद है। इसलिए संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम एक नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला के लिए हमारे विशेष अतिथि हैं आकाशवाणी परिवार के आत्मीय सदस्य और आकाशवाणी के प्रथम श्रेणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी जयंत पात्रीकर। सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, कोई पूछे कि हमारे देश में रेडियो पर सबसे अधिक क्या सुना जाता है, तो वो है संगीत, और उसमें भी फिल्म संगीत के सुनने वालों की बहुतायत है। हमारा सिने संगीत संस्कारित है शास्त्रीय संगीत से। सिने संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला का आज शुभारंभ हो रहा है। हमने आमंत्रित किया है श्री रविंद्र खासनीस जी को, जो आकाशवाणी के अश्रेणी संगीत रचनाकार हैं, आला दर्जे के तबला वादक हैं और हमारे अपने हैं आकाशवाणी परिवार के आत्मीय सदस्य। रविंद्र जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: इससे पहले कि हमारी चर्चा शुरू हो,
2: हाँ,
1: हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें कि आकाशवाणी में से किस तरह से आपका जुड़ाव हुआ, कैसे आप आकाशवाणी में आए।
2: जी, मैं बचपन से ही संगीत से जुड़ा हूँ और मैंने तबला सीखने की शुरुआत जो है वो मेरे 6 साल के आयु में की है।
1: जी,
2: मैं शुरू में आकाशवाणी का चाइल्ड आर्टिस्ट था, उसके बाद में मैं आकाशवाणी का ही यूथ आर्टिस्ट बना।
1: क्या बात है।
2: और 1988 में मैंने UPSC की एग्ज़ाम देकर आकाशवाणी में मैं कार्यक्रम अधिशासी के रूप में मैंने ज्वाइन किया। मैं तो कई आकाशवाणी केंद्रों पर काम कर चुका हूँ महाराष्ट्र में।
1: जी,
2: क्योंकि संगीत से हमारा जुड़ाव था और हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते आए थे संगीत की, तो आकाशवाणी में आने के बाद में मैंने आकाशवाणी की म्यूजिक कंपोजर की ऑडिशन दी। कहते हैं कि अगर आपने हुनर है तो वो हुनर दिखाने के लिए आकाशवाणी जैसा और कोई व्यासपीठ है नहीं। तो आकाशवाणी ने तो मुझे बचपन से ही बहुत कुछ दिया और उसी में जब नौकरी करने आया तब मैंने आकाशवाणी में म्यूजिक कंपोजर की ऑडिशन दी और मैं प्रभु की कृपा से Grade 1 म्यूजिक कंपोजर हूँ। कई सारे म्यूजिकल फीचर हमने आकाशवाणी के लिए किए। उसके बाद मैं आकाशवाणी के सॉन्ग ऑफ द मंथ में कई सारे गानों में संगीत दिया।
1: क्या बात।
2: और बहुत सारी रचनाएं आकाशवाणी के लिए की हैं। तो ये मेरा संगीत का जो बचपन से जो प्रवाह शुरू हुआ तो आज तक लगातार जारी है।
1: क्या बात है। तो आज हमारे अपने एक अधिकारी हैं मगर एक कलाकार के रूप में आज श्रोताओं के सामने हैं, हमारे बीच उपस्थित है आप। तो अपनी श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं।
2: हाँ।
1: फिल्म संगीत में, सिने संगीत में तबले का जो दौर है उसकी बात होगी और समय के अनुसार इसमें जो परिवर्तन आया है उस पर हम बात करेंगे।
2: जी,
1: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रविंद्र जी कि तबला ये जो वाद्य है इसका जन्म कैसे हुआ और इसके जन्म से जुड़ी कोई कहानी होगी तो उसके बारे में भी कृपया हमारे श्रोताओं को बताइए।
2: हम लोग अगर हमारे पुराने स्कल्पचर देखते हैं
1: जी,
2: तो उसमें ज़्यादातर हमें यही दिखता है कि मृदुंग या पखावज
1: जी
2: ये वाद्य हमारे पास थे और हमारे यहाँ पर ध्रुपद धमार गायकी होती थी।
1: जी जी।
2: फिर जब अकबर बादशाह के ज़माने में ख्याल गायकी का विस्तार होने लगा

0: तो उसमें ये होता था कि ख्याल का जो गायन है वो मृदु शैली में है और उसके ऊपर पखावज के बोल भारी पड़ते थे
1: जी।
0: तो इसलिए शायद तबले के जन की कथा जो है वहाँ से शुरू ही हुई है। कहते हैं कि अमीर खुसरो साहब जो है उन्होंने पखावज को विभाजित किया, मतलब अच्छा। दो भागों में उसका विभाजन किया और उसका जो आकार है वो तबले का आकार उसका दिया
1: जी।
0: तो बाया और दाया ऐसे उसके दो भाग हुए। और कहते हैं कि वो जब तोड़ा तब बोला,
1: हाँ
0: तो तब बोला से वो तबला शब्द अच्छा। वहां से आया है। अब ये तो मतलब कहानी है, इस पर किसका कितना विश्वास होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन तबला वाद्य जो है ये वाद्य दाया बाया दोनों का मिला हुआ वाद्य है
1: जी।
0: और उसने पखावज की तुलना में उसके जो बंद बोल है वो ख्याल गायकी के लिए बहुत अच्छे उसके साथ में मिल गए
1: जी।
0: और इसलिए ख्याल गायन में तबला संगति का प्रचलन होने लगा।
1: पखावज के जो बोल होते हैं रविंद्र जी,
0: हाँ।
1: और तबले के बोल,
0: हाँ,
1: इनमें अंतर क्या है?
0: वैसे पखावज जो है वो खुला वाद्य है
1: जी, जी।
0: मतलब पखावज पे वो धा जो है वो खुला धा, धा।
1: खुला बाज कहा जाता है
0: धा,
1: जी।
0: इट धा दिन ता इट कत गदी गन धा, तो पखावज जो है वो खुला वाद्य है, उस पे खुले बोल बजते हैं
1: जी जी।
0: अब पखावज का जो धा खुला बजता है वही धा तबले पर बंद है वो धा। तो तबले की जो बोल है वो बंद बोल है
1: जी,
0: और पखावज के खुले बोल,
1: खुले बोल होते हैं।
0: वैसे शुरू में हमारे पास पखावज था तो पखावज का जो साहित्य था वो बहुत विपुल साहित्य है पखावज का
1: जी।
0: तो उसी साहित्य को लेकर तबले का भी साहित्य बढ़ने लगा,
1: इसका भी एक अलग शास्त्र बना,
0: बिल्कुल शास्त्र जी, बना जी। तबले के घराने बने जैसे दिल्ली, अजराड़ा, पंजाब, बनारस, लखनऊ, ऐसे तबले के घराने बने,
1: हाँ हाँ।
0: और उसमें भी बहुत शैलियाँ विकसित हुई
1: जी,
0: और कई सारे तबले के मतलब स्वतंत्र वादन के कार्यक्रम और तबला संगत, ये दोनों चीजें उसमें आ गई
1: जी जी। इसमें भी कुछ महनीय कलाकारों ने बोल निकालने का यानी तबले से बोल बजाने का अपना अपना तरीका विकसित किया है।
0: बिल्कुल, मतलब घराना जो होता है वो उसी विशेषता से लेकर होता है। घराने जो तबले के है
1: जी,
0: उनके जो बोल है,
1: हाँ,
0: उसके वो बोलों के आधार पर उसका घराना पहचाना जाता है। तो ऐसे तबले के घराने और उनका बोल और उनका पूरा साहित्य विकसित हुआ है
1: जी जी।
0: पखावज के जो खुले बोल है
1: जी,
0: तो एक ऐसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं। अब तबले पे ही उसका मतलब निकास कैसे होती है, तबले पर पखावज की निकास है ये।

ये पखावज का एक नमूना है कि ये खुला बोल पखावज पे बजता है। अभी ये तबले के जो बोल होते हैं वो बंद बोल है। हाँ। तो वो इस तरह से

0: सुनने को मिलता है, ऐसा कोई गीत आपको याद आ रहा हो तो अपने श्रोताओं को सुनवाएं।
1: हाँ बिल्कुल याद आ रहा है, चौताल जो है, धा धा दिन ता किट धा दिन ता तीट कत गदी गन धा
0: जी।
1: इसमें सप्त सुरन तीन ग्राम गीत है जो चौताल में निबद्ध है, बहुत ही लाजवाब है और बहुत कम ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं जो चौताल में मृदंग के ऊपर पखावज के ऊपर वो बजाए गए हैं।
0: आइए सुनते हैं।

0: संगीत सम्राट तानसेन। इस फिल्म का गीत आपने सुना मन्ना डे के स्वर में, संगीतकार SN त्रिपाठी।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला की पहली कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला के लिए हमारे विशेष अतिथि हैं श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

की इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और धुन एस टी बर्मन ने बनाई थी। कण कण में भगवान, लीजिए अब सुनिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में ये गीत। इसे सुमन कल्याणपुर ने गाया है, भरत व्यास ने लिखा है और शिवराम ने इस गीत की धुन बनाई है।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम है लागी नाही छूटे राम। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और तर्ज है चित्रगुप्त का।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से एफएम बैंड पर। आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर।

सुबह 7:20 पर गोरखपुर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचारों के बाद 7:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश होगा। सुबह 8:15 पर सुर संगम, 8:30 से कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में चर्चा का विषय रहेगा विश्व दुग्ध दिवस, और इसी कार्यक्रम में श्रीधर द्विवेदी से संजय धर द्विवेदी की बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय रहेगा चार पहिया वाहनों में इन्फोटेनमेंट सिस्टम का महत्व। सुबह 9:00 से व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत प्रसारित किया जाएगा, और 9:30 से हमारे सजीव स्टूडियो से लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या का होगा प्रसारण। नंबर होगा 7376-8040-90। सुबह 10:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, 12:30 पर होगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, और दोपहर 1:00 से फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। दिन में 2:00 से सुनिएगा गैर फिल्मी नगमों का प्रोग्राम गीतांजलि। दोपहर समाचार के बाद 2:30 पर अंगना कार्यक्रम के अंतर्गत वैश्विक अभिभावक दिवस, विश्व दुग्ध दिवस और नीलम संजीवा रेड्डी पर चर्चा के अलावा रूपम श्रीवास्तव की वार्ता सुनवाएंगे। विषय रहेगा अभिभावक का बच्चों के प्रति कर्तव्य। शाम 5:00 से युवाणी में चर्चा का विषय रहेगा वैश्विक अभिभावक दिवस, विश्व दुग्ध दिवस, खास सेगमेंट करियर गाइडेंस में लड़कियों की शिक्षा और करियर पर जानकारी के लिए कुसुम लता से बातचीत करेंगे सदक हुसैन। गीत संगीत और रोजगार समाचार आज के युवाणी में होगा। शाम 5:00 से लोक संगीत, 6:10 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी, शाम 6:30 से लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे स्वरगांव के, शाम 6:45 पर कृषि जगत में चर्चा का विषय विश्व दुग्ध दिवस, और अभिषेक मिश्रा से जानेंगे लू और गर्मी में पालतू पशुओं का देखभाल और प्रबंधन।

0: गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सके।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है।
2: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाएं, जिससे कि नदी पूरा साफ हो सके। क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हुलाइंग ने कल गौतम बुद्ध नगर में एनटीपीसी लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस का दौरा किया। उनके साथ म्यांमार का मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वह अपने सेवा प्रदाता के ऑन मार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाए। स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: उधर उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग की एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड संगठन प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा जन सेवा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। बदलते समय और नई चुनौतियों के अनुरूप इस संगठन को अधिक सक्षम, प्रशिक्षित, तकनीकी रूप से दक्ष और आधुनिक बनाया जाना चाहिए। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का स्थायी पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे थे। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग

श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। वह जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग द्वारा कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जिलों में तूफान, बारिश, ओले गिरने और बिजली गिरने की घटनाओं के पीड़ितों के त्वरित सहायता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: ऐसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आए आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: AYODHYA AKASHVANI

0: @gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
1: कार्यक्रम अमृत कलश में आपका फिर से स्वागत है। और आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना एक बार फिर से अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

0: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
1: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
0: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
1: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
0: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
1: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
0: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
2: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जन जन की सेवा में शिक्षा और मनोरंजन के लिए सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
1: कार्यक्रम अमृत कलश में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं कैलाश अनुज और पीयूष के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: कैलाश अनुज और पीयूष शाह के स्वर में गाए इसी भक्ति रचना के साथ समाप्त हो रहा है हमारा भक्ति गीतों का कार्यक्रम अमृत कलश FM बैंड 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह है आपका प्यारा FM आकाशवाणी अयोध्या। सुबह के 8 बजने को है, हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए समाचार प्रभात।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के आए गए, इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9 करोड़ 50 लाख किसान परिवारों के खातों में 4 लाख

0: 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार

0: लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत में 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Akashvani presents Morning.
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुर संगम।
2: अयोध्या वासियों को अब

0: रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: कार्यक्रम सुर संगम में आप सभी का स्वागत करता है आपका रेडियो दोस्त सदक। और अब से लेकर सुबह 10 बजे तक लगातार बैक टू बैक स्टूडियो से कार्यक्रम होंगे आपके लिए। सुर संगम के बाद आपके लिए लेकर आएंगे प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम, और उसके ठीक बाद व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम, आपके संदेश आपके गीत, और 9:30 से आपका प्यारा हेलो अयोध्या सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा। चलिए शुरू कर रहे हैं इस प्रोग्राम को फाल्गुनी पाठक के स्वर में गाए इस गाने के साथ, और इस गीत के कंपोजर हैं ललित सेन।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ।
1: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती है।
0: लेकिन एक

0: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
1: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
0: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
1: जी हाँ, और वो है योग।
0: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
1: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
0: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
1: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
0: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
1: योग करिए, निरोग रहिए।
2: कार्यक्रम सुरसंगम में आइए अब आपको सुनवाते हैं नुसरत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है हसन रिजवी ने।

नुसरत फतेह अली की आवाज में गाए इस गाने के साथ खत्म हो रहा हमारा आज का ये गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुर संगम एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर ये आपका एफएम आकाशवाणी अयोध्या केंद्र है। सुबह के 8:30 हो गए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या।

0: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
1: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ECHS से सूचीबद्ध।
0: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है मुफ्त इलाज।
1: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत मुफ्त इलाज।
0: कॉल करें 6386907006।
1: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: मछली मंडी, नियामा, अयोध्या।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में इस ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इस विविध रंगी कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में प्रतिदिन हम आपके लिए कुछ विशेष जानकारी और रोचक भेंटवार्ताएं लेकर आते हैं। आज इसी क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ये भेंटवार्ता, जिसका विषय है चार पहिया वाहनों में इंफोटेनमेंट सिस्टम का महत्व। वार्ताकार हैं श्रीधर द्विवेदी और आपसे बातचीत कर रहे हैं संजय धर द्विवेदी। आइए सुनते हैं इस खास बातचीत को।
5: श्रोताओं, इंफोटेनमेंट सिस्टम के संबंध में तो आपने बहुत सुना होगा, जाना भी होगा, लेकिन चार पहिया वाहनों में इंफोटेनमेंट सिस्टम का क्या उपयोगिता है, किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है और जो वाहन चालक है उसको उससे क्या लाभ होता है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ऑटोमोबाइल अभियंता श्रीयुत श्रीधर द्विवेदी जी को। द्विवेदी जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: नमस्कार, धन्यवाद।
5: सर, सारे लोग वाकिफ हैं इंफोमेंट सिस्टम से,
6: जी जी,
5: लेकिन चार पहिया वाहनों में इसका क्या उपयोग है और उससे कैसे एक वाहन चालक लाभ प्राप्त कर सकता है, क्या सुविधाएं पा सकता है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
6: बहुत सुंदर आपका प्रश्न है और आज के हिसाब से है ये।
5: जी,
6: जैसा कि पहले मैं बता दूं, इसको परिभाषित कर दूं, ये इंफोटेनमेंट दो शब्दों से बना हुआ
5: जी,
6: है
5: जी,
6: इन्फो प्लस इंटरटेनमेंट।
5: हाँ।
6: इन्फो का मतलब इन्फॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट का मतलब
5: मनोरंजन,
6: उसको मनोरंजन करना। जब ये दोनों को हम क्लस्टर कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम बन जाता है।
5: क्या बात जी।
6: तो ये आजकल के जितने भी आधुनिक वाहन आ रहे हैं उन सब में ये सिस्टम लग करके आ रहा है,
5: कंपनी की तरफ से
6: लग करके आ रहा है। ये हर वेरियंट में तो नहीं आता है, लेकिन
5: कुछ खास
6: वेरिएंट्स में इसकी विशेषता को देखी जा सकती है।
5: तो क्या इससे जो वाहन चालक है उसका मनोरंजन किया जाता है या कुछ और उद्देश्य है इसके?
6: बिल्कुल, बहुत सही आपने प्रश्न किया है। इसमें देखिए, दो तरीके के इन्फॉर्मेशन हमेशा डिस्प्ले होते रहते हैं।
5: हाँ।
6: जैसा कि मैंने पहले पहला कि एक तो गाड़ी से संबंधित इन्फॉर्मेशन, जैसे बैटरी में पानी है कि नहीं,
5: जिस वाहन को हम चला रहे हैं जी,
6: कूलेंट है कि नहीं, ब्रेकिंग सिस्टम काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, टायर प्रेशर क्या है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, अंदर का टेम्परेचर क्या है, गाड़ी में आपका कोई दरवाजा खुला तो नहीं है,

0: कोई लाइट जल तो नहीं रही है, इससे संबंधित सारे जो विजेट्स होते हैं, विजेट्स बोला जाता है, वो क्लस्टर ऑफ विजेट्स ये डैशबोर्ड पे और आपके उस इंफोटेनमेंट सिस्टम पे ये प्रदर्शित होते रहते हैं।
1: यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जब हम गाड़ी में बैठ के कहीं जाने को होते हैं
0: जी जी।
1: तो गाड़ी को लेकर के जितने सारे विचार हमारे मन में उपजते हैं
0: वो सब स्क्रीन पे दिखाई देते
1: हैं,
0: वो स्क्रीन पे आपको दिखाई देते हैं, उससे आप जान जाएंगे कि आपकी गाड़ी में ईंधन कम होने वाला है, आपकी गाड़ी में प्रेशर है, बाहर का टेम्परेचर ये है, अंदर का टेम्परेचर ये है, कौन सा म्यूजिक बज रहा है, कौन सा आगे म्यूजिक बजने वाला है, ये सब चीजें सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको बिना कोई स्विच दबाए हुए, बिना आप गाड़ी अवरोधित किए हुए आप उसमें देख सकते हैं और उसको सुचारू रूप से चालित। आपका मालिक गाड़ी चला रहा है, उसमें आपकी कॉल आ गई, कोई मैसेज आ गया, कोई मेल आ गया, बिना गाड़ी को रुके हुए, बिना मोबाइल को उठाए हुए आप उसमें सभी चीजें क्रमशः देख सकते हैं और देख ही नहीं सकते हैं, आप अपने वॉइस कमांड के थ्रू
1: रिप्लाई भी कर
0: उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं।
1: क्या ऐसे ऐसा करते समय वाहन चलाने में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होता?
0: कोई उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए इसमें हमेशा उन चीजों का ही क्लस्टर किया जाता है, विजेट्स दिए जाते हैं जिससे ड्राइवर को या को ड्राइवर को कोई परेशानी या कोई व्यवधान ना हो। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, उसमें वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा है
1: जी,
0: और आपका रिकॉर्डिंग की भी सुविधा है
1: जी,
0: और वीडियो चलाने की भी सुविधा है
1: उसके अंदर
0: पिक्चर आप चला सकते हैं, वो तभी आप देख सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं जब आपकी गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़ी हो, चलते समय ये ऑटोमेटिक वो ब्लॉक कर देगा जिससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ पीछे वाली सीट्स में वीडियो चल रहा है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, वो पीछे वाला बैठा यात्री या पैसेंजर उसको आराम से इंजॉय कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, हर चीज का जवाब दे सकता है
1: उसी समय में। लेकिन वाहन चालक के लिए प्रतिबंधित,
0: चालक के लिए और
1: उसके बगल में बैठा हुआ
0: ये
1: लोग उसका आनंद तब तक नहीं ले सकते जब तक कि वाहन
0: गाड़ी पार्किंग में कहीं खड़ी ना हो। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, अति आवश्यक है कि वीडियो कॉल करना है माताजी पिताजी से या किसी, कोई कौन का आजकल जान ही रहे कौन कॉल चलता रहता
1: है, बिल्कुल,
0: तो आप गाड़ी कहीं किनारे पार्क कर लीजिए और जैसे ही आप गाड़ी पार्क करेंगे ऑटोमेटिक स्क्रीन आपकी चालू हो जाएगी और जैसे गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगेंगे ऑटोमेटिक वो स्क्रीन आउट ऑफ रेंज हो जाएगी,
1: यानी
0: इनविजिबल।
1: वाहन की सुरक्षा और ड्राइवर की सुरक्षा
0: से
1: दोनों का ध्यान
0: रखा गया है।
1: और क्या क्या सुविधाएं देता है
0: उसमें? मैंने आपको बताया ना कि हर चीजों का, जैसे बाहर का टेम्परेचर क्या है, अंदर का टेम्परेचर क्या है, आपके बगल से कौन सी गाड़ी गुजर रही है,
1: ये भी बताएगा,
0: ये भी बता देगा। आपको याद होगा पिछली बार हम लोग बात किए थे एडास के बारे में और ईसीवीटी के बारे में
1: जी,
0: ये स्क्रीन पे ही सब कुछ दर्शाते जाता है, आपको अलग से कोई स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं। आप गाड़ी किस गियर पे चला रहे हैं,
1: ये भी बता,
0: कितनी स्पीड में चला रहे हैं वो आपको इंडिकेट
1: डिस्प्ले होता रहता है।
0: इंडिकेट आपकी गाड़ी में सपोज कर लीजिए कि तेल खत्म होने वाला है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितना आपकी तेल टंकी में बची है उसका उतना किलोमीटर आपको कन्वर्ट करके बता देगा कि इतने किलोमीटर आप और चल सकते हैं। और यही नहीं, श्रोतागण इसको बड़े ध्यान से सुने, ये भी बता देता है कि आपका नियरेस्ट पेट्रोल पंप कहाँ है, ये भी आपको लोकेशन आपको बता देगा और आप उसके ओके कर देंगे तो आपको पेट्रोल पंप ले आके गाड़ी वो खड़ी कर देगा।
1: यानी कि अगर 10 किलोमीटर की यात्रा करने भर का पेट्रोल शेष है
0: जी,
1: तो 10 किलोमीटर के अंदर जो भी पेट्रोल पंप उसको सजेस्ट,
0: उसको सेटिस्फाई करके उसको आप
1: पहुंचा
0: करके वो भरा सकता है,
1: तो
0: उसमें चॉइस का देता है, जिस पे आप ओके करेंगे उसी पेट्रोल पंप को ले जाकर के आपकी गाड़ी को वो रोक देगा और वहां अपना ईंधन भराइए।
1: अच्छा,
0: अपने गंतव्य को चल
1: द्विवेदी जी, ये तो रही आधुनिक चीजें उसमें दी गई हैं जिससे जो एक सचेतक का काम करती है वाहन चालक के लिए कि वो अभी उसकी गाड़ी किस कंडीशन में है और वो किस तरह से तैयार है काम करने के। और आपने बताया कि अगल बगल से गुजरते हुए वाहनों को भी बताता रहता है जिससे कि कई बार हम अवेयर नहीं रह पाते हैं और झटका खा जाते हैं।
0: और यही नहीं, उस इंफोटेनमेंट सिस्टम पे एक माल फंक्शन लाइट
1: सर
0: जल जाती है। ये लाइट वो है कि अगर ये लाइट जल गई तो आप 60 किलोमीटर तक ये आप समझिए कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आने वाली है।
1: अच्छा,
0: ये बता देगी। ऑरेंज कलर की लाइट रहती है, उसको माल फंक्शन लाइट बोलते हैं, वो ऑरेंज कलर की लाइट जल गई तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम
1: आ रही है।
0: तो उसको 60 किलोमीटर तक आप उसको गाड़ी चला सकते हैं। और ऐसा है नहीं कि आज के इस युग में 60 किलोमीटर के अंदर आपको कोई सर्विस स्टेशन ना मिले। इसकी सबसे
1: वो ऑरेंज लाइट एक ऐसा सूचना दे रहा है,
0: वार्निंग लाइट उसको
1: मान लीजिए, आप तुरंत जो है अवसर आते ही अपने
0: आप अपने वर्कशॉप में जा करके उसको जाकर के दिखा लें और उससे आप निजात पा सकें।
1: अच्छा, जो आपने बताया कि एक ऑरेंज कलर की लाइट जल जाती है जब समय वर्कशॉप में गाड़ी लेके पहुंचता आदमी, तो जो वर्कशॉप के मैकेनिक हैं

0: इंजीनियर हैं जो देखते हैं, क्या उनको अंदाजा लग जाता है कि कहां गड़बड़ी हो सकती है?
1: बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं लगता है।
0: हाँ,
1: वो एक मशीन होती है। हाँ, वो डिटेक्टर, वो तुरंत लगा के चेक कर लेंगे तो आपके गाड़ी के किस हिस्से में
0: वो गड़बड़ी
1: प्रॉब्लम आ रही है या आ चुकी है, वो तुरंत वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जिस हिसाब की प्रॉब्लम रहती उस हिसाब से समय लेकर के और आपकी अनुमति लेकर के वो गाड़ी को बनाना स्टार्ट कर देते हैं।
0: देवी जी, जैसा अगर ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो लग रहा है गाड़ियों में तो जाहिर सी बात है कि ये काफी महंगा रहता होगा।
1: देखिए, इसमें अलग अलग तरीके के रेंज के आते हैं
0: जी,
1: हर तरीके का रेंज है। महंगा तो जरूर रहता है क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके डैशबोर्ड पे एक ही जगह पे बिना कुछ किए हुए आपको मिल जाता है। याद होगा प्राचीन समय में, और ज्यादा नहीं आज से 10 साल पहले जाइए आप पीछे, तो हम कहीं जब लंबी यात्रा में जाते थे तो हवा चेक कराते थे, जाने के पहले पेट्रोल चेक कराते थे, मोबिल चेक कराते थे, लुब्रिकेंट चेक कराते थे कि एसी का काम हमारा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीजें, कूलेंट सिस्टम चेक कराते थे, दुनिया भर की चीज, बैटरी मेरी चार्ज है कि नहीं, ये सब चीजें चेक करा के तब चलते थे। अब आज के सिस्टम में आप जैसे ही सीट पर बैठेंगे, यहां तक कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो उसकी वार्निंग आपको दे देगा, यहां तक अगर 80 किलोमीटर की इसके ऊपर से बढ़ रहे हैं तो भी वो वार्निंग
0: देगा,
1: बीपर वो आपका दे देगा, वो बजने लगेगा। तो ये सब सारी सुविधाएं एक जगह बैठे बैठे आपको मिल जाती हैं, तो आज के लिए ये बहुत ही आवश्यक
0: इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो गाड़ी में लगा हुआ है।
1: सिस्टम आपने
0: एक चीज बताएं, जब कोई क्रेता किसी एजेंसी में गाड़ी खरीदने जाता है
1: जी जी,
0: तो द्विवेदी जी जाहिर सी बात है उसके मन में रहता है कि कम से कम पैसा, अधिक से अधिक सुविधा,
1: फैसिलिटी। बिल्कुल सही, इसीलिए इसमें देखिए ये जो मैंने फैसिलिटी बताई,
0: हाँ,
1: ये जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी के एक प्रकार की गाड़ी नहीं होती, अलग अलग वेरिएंट की गाड़ियां होती हैं, LXI, VXI या अलग अलग करके, उसमें हर कंपनी का अपना अलग अलग मानक है, उस हिसाब से। आजकल की गाड़ियों में जैसे अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गया है,
0: सरकार ने भी प्रबंध किया।
1: अब सपोज कर लीजिए कि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गया है, ठीक, एक एयरबैग आपका पिछले घटना में खुल चुका है, वो भी बता देगा कि आपका ये वाला एयरबैग काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने परिवार को बैठा रखे हैं,
0: जीवन रक्षा भी,
1: अलग अलग सीट्स पे अलग अलग एयरबैग्स होते हैं, तो उस एयरबैग जहां एयरबैग नहीं है, फट चुका है, यूज हो चुका है, उस सीट पे आप किसी को नहीं बैठाएंगे कि मान ली अगर कोई अनहोनी हो तो उसको इफेक्ट ना पड़े। तो उसी तरीके की ये सुविधाएं हम यहाँ पर देख के रखते हैं, और 6 एयरबैग अब हर गाड़ी में स्टैंडर्ड हो चुका है, या शुरू के वेरिएंट से लेकर टॉप के वेरिएंट तक आता है,
0: सब में आता है।
1: तो जब हम बीच या बीच के ऊपर वेरिएंट में पहुंचते हैं, ज्यादा नहीं कॉस्टली होता, 70-80 हजार रुपए का एक से दूसरे वेरिएंट में जाने से लगता है, उतने में ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और सारी सुविधाएं लगभग आपको उस डैशबोर्ड पे
0: मिल,
1: उस इंस्ट्रूमेंट पे मिल जाती, उस इंस्ट्रूमेंट पैनल पे आपको ये मिल जाती है। और ये मैं तो मतलब बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी ग्राहक आज के समय में अगर वो हर तरीके से सक्षम है तो उस गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए,
0: लेना चाहिए।
1: कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी, गाड़ी चल रही है आपको जानकारी बदलती जा रही है,
0: बिल्कुल।
1: आपने कहीं आप यात्रा पे निकले पूरा टैंक फुल कराया, उसमें दिखाएगा 1000 किलोमीटर तक आप चल सकते हैं, आधा पार कर ली उसमें दिखाएगा 500 किलोमीटर चल सकते हैं।
0: एक तरह से गाड़ी का KYC हम जानते जा रहे हैं कि हमारी गाड़ी की क्या पोजीशन
1: क्या है,
0: उसके बारे में किलोमीटर जो
1: कितना बचा है, कितना क्या है, कैसे है, ये है वो है, सब चीजें।
0: मेरे मन में जो एक प्रश्न था अगला
1: जी
0: कि मैं आपसे ये पूछूं कि बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर ये न लगवाएं तो हमारा काफी पैसा बच जाएगा,
1: बच जाए,
0: लेकिन तो मेरा क्या करें, लेकिन आपने पहले ही ये राय दे दिया।
1: मेरा अनुरोध है कि अगर वो हर तरीके से सक्षम है, और आजकल तो गाड़ियां देखिए इतना इजी फाइनेंस हो गया है कि हर व्यक्ति उसके अंडर में आ रहा है और फाइनेंस की सुविधा ले रहा है, तो फाइनेंस जब कराता है 70-80 हजार रुपए और महंगा का, तो मुश्किल 300-400 रुपए प्रति माह का उसका और किस्त बढ़ जाता है,
0: जो आधुनिक
1: आधुनिकता से लैस हो जाता है,
0: विज्ञान जो दे रहा है उसको
1: जी,
0: जिससे उसका जीवन रक्षक है, तो उसको लेने में कोई बुराई
1: वो
0: नहीं
1: लेने में उसको कोई बुराई नहीं। कितना किलोमीटर उसमें देखिए एक चीज और आप पा सकते हैं, गाड़ी आप चला रहे हैं ठीक, अंदर क्या हो रहा है उसकी भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है
0: उसमें,
1: वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपने गाड़ी किसी थर्ड पर्सन को दी है कि गाड़ी ले जा रहा है वो लखनऊ जा रहा है घूमने, वो गाड़ी से क्या क्या छेड़खानी कर रहा है, वो ड्राइवर ने किस मिस्त्री को दिखाया, क्यों दिखाया, क्या चीज छुआ गया,
0: वो सारी
1: उसकी उस पर निकल आती है। ये इतनी अच्छी चीज है,
0: यानी गाड़ियों में इन्फोमेंट सिस्टम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है,
1: बहुत ही महत्वपूर्ण और उतना ही लाभदायक है,
0: लाभदायक है। श्रीधर द्विवेदी जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियर की हैसियत से 4 पहिया वाहनों में इन्फोमेंट सिस्टम का कितना महत्व है इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दी।

0: आपका आकाशवाणी परिवार की तरफ से और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आपने सुनी ये रोचक भेंट वार्ता जिसका विषय था चार पहिया वाहनों में इंफोटेनमेंट सिस्टम का महत्व। श्रीधर द्विवेदी से बातचीत कर रहे थे संजयधर द्विवेदी। और आइए अब चलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर, समाचार पत्रों की ओर, जिसमें हम आपको चंद स्थानीय खबरों से परिचित कराते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से। दैनिक अमर उजाला के अनुसार स्वच्छ और सुंदर अयोध्या के संकल्प को जन आंदोलन का रूप देने के लिए कल रविवार को नगर निगम की ओर से एक रविवार हर परिवार करे गंदगी पर प्रहार अभियान के तहत निगम के सभी 60 वार्डों में सुबह 7 बजे एक साथ सफाई महाअभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने लता चौक से सरयू तट तक झाड़ू लगाकर की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 54,000 से अधिक पंजीकरण हुए और 25,000 लोगों ने लगभग प्रतिभाग किया। ग्रामीणों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण और सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जनपद के सभी तहसीलों में आज 1 जून को ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। तो श्रोताओं, ये थे कुछ समाचार पत्रों से जानकारी आप तक। और आइए प्रोग्राम में चलते चलते सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गाना।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध रंगों से सजा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। FM 101.9 MHz पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रमों को आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए न्यूज ऑन एयर ऐप और कई प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
2: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
3: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
2: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
3: फोन नंबर 91-61-877-347।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत को लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त सदक। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, इस कार्यक्रम में हम व्हाट्सएप के जरिए जो आप अपने फरमाइशें संदेश हम तक भेजते हैं उसके जरिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का गाना। तो पहला संदेश हमें व्हाट्सएप के जरिए जो आज के प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं जो मिला है, सदर बाजार मारवाड़ा बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान जी का मिला है। अब सभी लोफर फिल्म का मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना सुनना चाहते हैं। आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

प्रोग्राम आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपके संदेश आपके गीत। और दोस्तों अगला संदेश हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा जी और इनके साथ शेख मूसा, राजकुमार बुड़ाना जी। तो लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर लता मंगेशकर मनहर उदास के स्वर में फिल्म हीरो का ये प्यारा सा गीत। एक बार फिर से गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: हेलो
2: हेलो हेलो टेलीफोन नंबर
3: माय नंबर इज
4: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से।

0: से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं फिल्म मेरा नाम जोकर से ये गाना, मुकेश जी की आवाज में। सुनना चाहे आप सबने मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा जी ने।

प्रोग्राम में अगला गीत शामिल कर रहे हैं फिल्म बेताब से, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का युगल स्वर है इस गाने में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहे हमारे इन श्रोताओं ने

बठिंडा रोड मंडी, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग जी ने। लीजिए सुनिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
0: यह है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com।
5: शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
6: श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि इस प्रोग्राम के ठीक बाद 9:30 से लेकर 10 तक होगा आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। इस प्रोग्राम के ठीक बाद 9:30 से नंबर आपको डायल करना रहेगा 7376804090। अपनी दिलचस्प बातों के साथ हाजिर होइएगा अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए। फिलहाल प्रोग्राम का ये आखिरी गाना आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म कुर्बानी से। कंचन मनहर और आनंद की आवाज़ है, समीर नहीं इंदीवर ने लिखा है इस गाने को। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनना चाहे हमारे इन श्रोताओं ने गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद ने। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे अभी हमारा व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। एफएम बैंड पर ही आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप प्रोग्राम को न्यूज ऑन एयर ऐप, वेव्स ओटीटी ऐप और कई अन्य प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। और अब हमारे स्टूडियो से शुरू हो रहा है आपका पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त सदक, आपसे बातचीत करने के लिए, आपकी पसंद का नगमा आप तक पहुंचाने के लिए। तो अपनी दिलचस्प बातों के साथ, अपनी पसंद के गाने के साथ तैयार रहिए। हम तुरंत शुरू कर रहे हैं आपका ये प्रोग्राम इस पहले कॉमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: भई नंबर तो आप सबको याद हो गया है हमारे इस प्रोग्राम का। लगातार ये प्रोग्राम पॉपुलर होता जा रहा है और ढेर सारी कॉल्स हर वक्त आती हैं। नंबर फिर से हम अपने नए श्रोताओं के लिए बता दें जो अभी नहीं जुड़े हैं आज तक, 7376804090 यानी 7376804090। इसी नंबर को देखिए, हमारे पहले श्रोता डायल करके हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
2: जी। हेलो
0: हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं?
2: मेरा नाम मोहम्मद
0: राजिक
2: है, मैं
0: अयोध्या मोहम्मद राजिक भाई बछड़ा सुल्तानपुर अयोध्या से आपने फोन लगा दिया है।

0: चलिए पहली कॉल आपकी लग गई है आज की सुबह में, कैसे हैं आप?
1: जी, आप लोग आए हैं,
0: बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं आप राजीव भाई?
1: जी सर, हम कुछ नहीं करते हैं, ब्लाइंड पर्सन हैं।
0: अच्छा, ब्लाइंड हैं आप?
1: जी, घर का सारा काम करते हैं, फोन का काम होता है, पूरा काम करते हैं सुबह शाम तक।
0: बहुत बढ़िया, चलिए घर का काम आप कर लेते हैं, आप ब्लाइंड हैं और हमारे नियमित श्रोता हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है हमको। कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आप सबको?
1: क्या हाल चाल रहे?
0: मेरा भी बहुत अच्छा, आपसे बात करके और अच्छा हो गया मैं।
1: जी है।
0: तो कौन सी?
1: हाँ, कौन सा नाम है?
0: जी, ये दिल आशिकाना है
1: जी।
0: कौन सा गाना?
1: अल्लाह अल्लाह करके।
0: अल्लाह अल्लाह करके कव्वाली एक है ना इसमें?
1: जी,
0: ये
1: पूरा गाना
0: नहीं, ये तो मुमकिन नहीं होगा क्योंकि और भी लोगों को जोड़ना, कव्वाली लंबी है, 7 मिनट की है। ठीक है, तो हम लेकिन सुनाएंगे आपको, सुनिए आप, मजा आएगा आपको। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
1: जी।

0: भाई इस प्यारी सी कव्वाली के बीच हमारे अगले श्रोता जुड़ेंगे हमसे। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रही है, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही है?
1: नमस्ते सर, मैं काजल कुमारी बोल रही हूँ।
0: काजल कुमारी जी का बहुत स्वागत है, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: सहनवा चौराहा अयोध्या से।
0: सहनवा चौराहा अयोध्या से जुड़ रहे हैं। क्या करती हैं काजल आप?
1: सर पढ़ाई करते हैं।
0: बहुत अच्छा करती हैं। और अभी मैं अपने श्रोताओं को बताऊं कि काजल ने मुझे खूब सताया, गाने बताती रही लेकिन फिल्म का नाम इनको नहीं याद है। मैं अपने सभी सुनने वाले प्यारे श्रोताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपनी फरमाइश लेकर आएं तो अपनी फिल्म का नाम भी जरूर पता करके आएं। ठीक है, फिल्म का नाम बताइए, गाना बताइए और अपनी पसंद का। फिलहाल इन्होंने अल्टीमेटली जाके धुरंधर का गाना सुनना चाहा, वो हम बजाएंगे। बाकी श्रोताओं से मेरी गुजारिश है। चलिए हाँ काजल, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम में बताइए।
1: सर मैं आपको एक शायरी सुनाऊं?
0: सुना दीजिए, सुना दीजिए।
1: छोटी सी जिंदगी की इतनी बड़ी कहानी बना देंगे, अजी छोटी सी जिंदगी की इतनी बड़ी कहानी बना देंगे, मेहनत इतना करेंगे मेरी जान की बाप को राजा और माँ को रानी बना देंगे।
0: वाह वाह वाह काजल, खुश कर दिया। ये आपने खुद लिखा है कि कहीं से चोरी किया है?
1: सर मैंने वो सुना था।
0: लेकिन आपके अगर जज्बात ये हैं जो इस लाइनों में कहा गया है तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, है ना। ये बहुत अच्छी बात है काजल की। आप मम्मी,
1: एक शायरी और
0: सुना दीजिए।
1: सर सुनाते, मेरी इतनी औकात नहीं बापू तेरे पसीने का हिसाब चुका दूं, अजी मेरी इतनी औकात नहीं बापू तेरे पसीने का हिसाब चुका दूं, बस जिंदगी में इतना पैसा कमाना है तुझ पे हंसने वाले तेरे कदमों में चुका दूं।
0: वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज में आप पेश हुई। और लीजिए आपकी पसंद का गाना हम पहुंचाते हैं काजल, फिर जुड़िएगा प्रोग्राम से। ठीक है,
1: ठीक है,
0: शुक्रिया।

भाई ये प्यारा सा प्रोग्राम है, सजीव फोन इन प्रोग्राम है, लाइव फोन इन प्रोग्राम है, रियल टाइम में चलने वाला प्रोग्राम है। आप करेंगे कॉल, आपके दिलचस्प बातें और आपकी पसंद का नगमा गूंजेगा आकाशवाणी FM अयोध्या से। नंबर मिलाना होगा 73 76 80 40 90। अगले श्रोता से करेंगे बात, लेकिन एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद।

0: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
1: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब ECHS से सूचीबद्ध।
0: आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है मुफ्त इलाज।
1: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत मुफ्त इलाज।
0: कॉल करें 6386907006।
1: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: मछली मंडी, नियामा, अयोध्या।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
6: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
5: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
6: और साथ में अपना नाम, पता
5: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
6: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
7: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
0: प्रोग्राम हेलो अयोध्या में आपका फिर से स्वागत है। आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो।
8: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रही है, कहाँ से?
8: सर हम तो वही बोल रहे हैं, ज्योति।
0: ज्योति यादव जी, वही ज्योति बोल रही है, कहाँ से बोल रही है ज्योति?
8: सर हम बच्चा सुल्तानपुर से बोल रहे हैं।
0: इससे पहले कभी बोली है इस प्रोग्राम में कि पहली बार बोल रही है?
8: जी पहली बार बोल रहे हैं।
0: अच्छा, तो आपका पहली बार कॉल लगा है। चलिए, तो
8: जी।
0: कैसा लग रहा है आपका फोन लग गया आकाशवाणी अयोध्या में?
8: सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
0: इससे पहले कभी कोशिश की थी आपने फोन लगाने की?
8: सर हम 20 साल से कर रहे हैं।
0: 20 साल
8: से पहले कर रहे थे सर, 20 साल से हम रेडियो सुन रहे हैं।
0: अरे बाप रे बाप, 20 साल पुरानी।
8: इसमें अमरजीत सिंह भैया भी आते हैं। अमरजीत
0: बिल्कुल आते हैं, कल ही आए थे ना
8: जी
0: अमरजीत भैया?
8: हाँ हाँ कल ही आए।
0: जी जी जी, मेरा नाम सदक
8: जी
0: है।
8: उनके जी, हाँ हाँ
0: जी।
8: और एक और आते हैं,
0: बहुत लोग आते हैं भाई।
8: जी जी
0: है ना, ढेर सारे लोग हैं, और अलग अलग आवाजों का आपको लुत्फ मिले इसलिए अलग अलग लोग आते हैं, ताकि नई नई आवाजें, नए नए अंदाज आपको सुनने को मिले, है कि नहीं? तो ये बताइए क्या करती हैं आप ज्योति?
8: सर हम तो घर ही पे रहते हैं, मेरे दो बच्चे, दो लड़कियां हैं सर, और मेरे हस्बैंड है, अलमारी का काम करते हैं सर।
0: अच्छा, वेरी गुड। हाँ, आपका जो क्षेत्र है बशरा सुल्तानपुर, वहाँ पर अलमारी बनाने का काम बड़े व्यापक स्तर पर होता है कि नहीं?
8: जी जी जी जी, गोदरेज अलमारी का काम।
0: हाँ, तमाम कंपनियों का, और अच्छा काम वहाँ होता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, वहाँ से ले जाते हैं, है कि नहीं?
8: जी जी।
0: चलिए ज्योति जी, तो आपने सुनना चाहा मुस्कान फिल्म का गाना ना?
8: जी
0: जरूर सुनाते हैं। और ये गाना चूंकि आप 20 साल पुरानी श्रोता हैं, तो आपको पता है कि मनभावन में भी खूब बजा करता था, और इसकी खूब फरमाइश होती थी।
8: जी, बहुत
0: ये गाना बजा है हमारे यहाँ से। चलिए आज आपकी पसंद पर बजेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू, नमस्ते।

0: आइए भाई जुड़ते हैं अपने अगले श्रोता से। हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: वाह भाई, उज्जैन के श्रोता से हमारी बात हो रही है प्रेम सिंह जी से, बहुत ही प्रेम से। हाँ, आपको अयोध्या से प्रणाम है,
1: आपका स्वागत है।
0: जी बहुत शुक्रिया, आपसे मेरी पहले भी कभी प्रेम जी बात हुई है, मुझे याद आ रहा है।
1: हाँ जी सर, हुई है बात। हाँ, आपसे पहले मेरी बात हो चुकी है एक बार।
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। आज
1: आप 3-4 महीने से आपको होता है, 3-4 महीने से रेगुलर अयोध्या कार्यक्रम सुनता हूँ। हेलो अयोध्या
0: जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको। आप महाकाल की नगरी से हैं और अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी से भी जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुनते हैं ना, तो हमें मिल जाते हैं कार्यक्रम सुनने को।
0: जी जी, मोबाइल ऐप पे सुनिए, वैसे भी अगर आप पूछ लीजिए व्हाट्सएप मतलब गूगल पे जाके आकाशवाणी अयोध्या, तो मिल जाते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको सुनने को मिलेगा ना।
1: जी बिल्कुल
0: जी। ये बताइए कि 2 हफ्ते बाद मेरा भी उज्जैन आना हो रहा है, है ना? तो मैं जानना चाहता हूँ कि उज्जैन में भगवान के मंदिर के अलावा और भी कुछ स्थान है घूमने लायक, जरा बताइए हमारे श्रोताओं को, और मैं भी घूम लूंगा जब जाऊंगा तो।
1: जी बिल्कुल, उज्जैन में जैसे कि आपको आएंगे ना तो महाकालेश्वर बाबा का मंदिर का तो देखना होगा ही, उसके साथ में महाकालेश्वर कॉरिडोर भी बनाया गया है।
0: जी
1: जी, उसको महाकालेश्वर कॉरिडोर देखने के बाद में आपको चित्रा नदी के किनारे सारे मंदिर मिल जाएंगे, माँ हरसिद्धि का मंदिर, गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, इन जगहों को भी देखना बहुत जरूरी होता है।
0: बहुत अच्छा, और कुछ टूरिस्ट?
1: और उसके बाद में आपको अगर पैलेस में जाना है ना, तो बहुत सारी ऐसे होटल है जो आपको मतलब कम रेट में मिल जाएगी और सारी सुविधा उपलब्ध रहेगी वहाँ पे।
0: बहुत बढ़िया, और कुछ वहाँ फेमस पार्क और ऐतिहासिक स्थान?
1: आपको एक पिकनिक स्पॉट भी मिलेगा वहाँ पे।
0: कौन सा?
1: जी हाँ, पिकनिक के लिए जैसे घूमने के लायक होता है ना।
0: जी जी जी, बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं।
1: हाँ जी, वो भी वहाँ पे मिलेगा आपको। और जब नागदा शहर है ना, यहाँ से उज्जैन से मतलब 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे बिरला मंदिर बना गया है ना, वो भी काफी प्रसिद्ध है। और वहाँ पे भी मतलब आपको बताऊँ, नारायण जी की मूर्ति बनाई गई है, विष्णु जी की।
0: जी जी जी।
1: और मतलब दूर दूर से मतलब लोग दर्शन करने के लिए वहाँ पर भी आते हैं, और मतलब पूरा गार्डन टाइप बनाया हुआ है।
0: बहुत बढ़िया, चलिए तो आना होगा तो आ ही रहा हूँ मैं, और वहाँ पे घूमता हूँ, और जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो भी जब उज्जैन जाएंगे तो इन जगहों पर जरूर घूमेंगे। आपकी पसंद का गाना?
1: सारी मतलब आपको बताऊँ, सारी सुविधा रहेगी आपको।
0: जी जी।
1: और काफी ऐसे चौड़े कर दिए गए हैं, आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और स्वच्छ और साफ शहर आपको दिखेगा हमारा।
0: बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। तो चलिए आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं हीरो फिल्म से, ठीक है? तू मेरा हीरो है।
1: जी थैंक यू सो मच सर, और जब आओगे ना आप तो एक बार हमसे मिलने की कोशिश जरूर करना।
0: ओके शुक्रिया।

0: भई हीरो फिल्म से ये गाना चल रहा था और हमारी अगली श्रोता लाइन पर आ चुकी हैं। उनसे हम बातें करेंगे लेकिन एक छोटे से अंतराल के उस पार।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
2: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
3: नहीं अछूता हो जिस
2: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
0: भई ये अगला गाना बज चुका है हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से हमारे अगले श्रोता की पसंद पर, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, एक बार हमारे श्रोताओं को अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से बात कर रही हैं? फिर से नाम बताएं। महिमा यादव, बछड़ा सुल्तानपुर। आज भाई बछड़ा सुल्तानपुर तो तीन तीन कॉल लग गई 6 में से, है ना? बछड़ा सुल्तानपुर बड़ा पहली कॉल और आखिरी कॉल दोनों लग गई, बीच में एक मैडम और आई थी काजल, क्या नाम था उनका, ध्यान से उतर गया। तो तीन तीन लोग आज जुड़े हैं, विशेष बधाई बछड़ा सुल्तानपुर के हमारे श्रोताओं को, और हमें लग रहा वहां ढेर सारे श्रोता हैं आकाशवाणी अयोध्या सुनने वाले, है कि नहीं? तो क्या करती हैं आप? हेलो जी, स्टूडेंट हैं? अच्छा, और क्या शौक रखती हैं पढ़ाई के अलावा? आपकी आवाज कट कट के आ रही, थोड़ा नेटवर्क में आइए कहीं, आवाज आपकी हमें ठीक से नहीं मिल पा रही। हाँ हाँ, आर्ट में इंटरेस्ट है आपको? चलिए बहुत बढ़िया, तो अपनी इस हॉबी पर भी काम करिए, खूब अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बनाइए और आकाशवाणी अयोध्या को जरूर सुनते रहिए, ठीक है? खुद भी सुनिए और लोगों को भी कहिए सुनने के लिए, आकाशवाणी अयोध्या से अच्छे कार्यक्रम, जानकारियां, सूचना, शिक्षा सब कुछ मिलता है, कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपकी पसंद का गाना हम पहुंचा रहे हैं अरिजीत सिंह और शशा तिरुपति की आवाज में हाफ गर्लफ्रेंड से। शुक्रिया, वेलकम।

0: को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
0: अब ये विद्यालयों में हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
1: जी।
0: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
1: जी।
0: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
0: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
0: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
0: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
1: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे, लेकिन हाँ जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे, तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझे। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है
1: जी। प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं?
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी।
0: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा

0: धारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है। इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
1: जी।
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा
1: जी।
0: आर्थिक रूप से कमजोर समूह हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है
1: जी। आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं, जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में।

0: जी
1: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहां, उत्तरी भारत में।
0: बिल्कुल,
1: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
0: जी।
1: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
0: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
1: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
0: जी।
1: लेकिन इन वीडियोस में ऑडियो भी है
0: जी,
1: और इन वीडियोस में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
0: जी,
1: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIET NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
0: जी।
1: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
0: जी
1: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
0: जी।
1: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
0: जी,
1: उसके

0: है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी।
1: जी,
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी,
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा। इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा।
1: जी,
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं, तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए। ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT से आज की कड़ी। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।
4: उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई और वो काफी मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया था उस वक्त।
5: हाँ जी।
4: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
5: जी, क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी? आप हमें अगर सुनाना चाहें या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो, जिस कविता ने
4: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
5: जी,
4: थी
5: जी,
4: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
5: बिल्कुल।
4: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूं। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये कविता लिखी है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था।
5: बहुत कुछ।
4: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
5: क्या बात है, बहुत खूब।
4: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है लेकिन यही कविता है जो उन्होंने
5: लिखी
4: उसी वक्त लिखी,
5: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा
4: अंकुर
5: हुआ
4: पैदा
5: और
4: हुआ।
5: वहां से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
4: हाँ
5: जी। तो मितुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले

0: हैं। आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
1: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा।
0: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी।
1: लेकिन जो बातें सुनी और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी
0: जी।
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बात

0: बातें होती थी तो तब मैंने ये सब सुना था और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
1: भूमिगत।
0: तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे
1: जी।
0: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
1: बिल्कुल,
0: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
1: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
0: शब्दों की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
1: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है।
0: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
0: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी बात,
0: सही बात
1: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
0: बहुत ज्यादा, गांधी जी उनके हीरो थे। तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा तो वो आप देखिए कि एक बच्चों की भाषा में लिखा है।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल,
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है ये इस गाने के सिवाय वो
1: कोई गाना
0: नहीं होती।
1: जी बचता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था, और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ। तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

0: अतुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था, शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे। तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं है जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रवाह होता था जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको कि देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं, और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी, सब लोग तुम क्यों रो रही हो, मैंने बोला फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती थी कि नहीं ठीक है ये बापू मतलब गांधी बापू, और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहां हम लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे नारे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या हैं,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं,
0: समझा लेते
1: कि अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे हाँ। भाई, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों
0: में कुछ
1: लिखा है तो।
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है। उजाले

फिल्म सावी का ये गाना आप सुन रहे थे। जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में रश्मि विराग के बोल थे और जावेद मोहसिन का संगीत था। और अब सुनवाते हैं मिताली सिंह का गाया हुआ ये गाना माधोलाल की वॉकिंग फिल्म से। सानिया असलम के बोल हैं और नायाब राजा का संगीत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार

मिताली सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे कतील राजस्थानी का कलाम, और अब आपको सुनवा रहे हैं ये गजल राजकुमार रिज्वी की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमा और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमा भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमा के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल

0: मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरों और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं गायिका, मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर को। सुनते हैं आधी रात के बाद फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के स्वरों में। प्रेम धवन की रचना को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

0: ना जलाना अखियां मिलाना तेरा हूँ ईमान से दिल लाया मैं बचा के पंजाब से
1: कितना है।

0: आंधी और तूफान, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फारूक कैसर के बोल थे और रॉबिन बैनर्जी का संगीत था। और अब ये संदेश और उसके बाद एक और गीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यादों के महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आपस की बात का गाना। सुमन कल्याणपुर के स्वर में अनजान के बोलों को संगीत से सवारा है अनु मलिक ने।
4: क्या सेवा कर सकता हूँ?
5: सेवा के बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल मुझे एक नहायत स्पेशल किस्म का बुके चाहिए।
4: स्पेशल बुके? लड़के के लिए चाहिए या लड़की के लिए?
5: इससे आपको मतलब?
4: जी मुझसे तो नहीं, लेकिन फूलों का फूलों से मतलब है। आई मीन हर फूल हर जगह नहीं भेजा जा सकता।
5: जी
4: जी हाँ, रंग और खुशबू का अपना एक मिजाज होता है, उसका एक करेक्टर होता है। फूलों में भी सनाना और मर्दाना फूल हुआ करते हैं। अब देखिए ना, मर्दों को सनाना और औरतों को मर्दाना फूल भेज जाते।
5: समझ गए, ये बुके एक लड़के के लिए है।
4: ओह दैट्स फाइन। अच्छा भैया बताइए कि वो लड़का आपको क्या लगता है? देखते बुरा मत मानिए, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर वो भाई है तो फूल अलग होंगे और वो फ्रेंड है तो फूल दूसरे होंगे। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ?
5: सेवा के बारे में बात।

0: अंजान का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म आपस की बात का ये गाना आपने सुना, आवाज सुमन कल्याणपुर की थी।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।

0: हिमाली शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: यह फिल्म अली बाबा और 40 चोर का गाना मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। और आइए सुनते हैं अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: कार्यक्रम लोक रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नेहा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है सोमवार, और सोमवार को जो लोक रंग कार्यक्रम होता है वो पूरी तरीके से होता है आपकी फरमाइशों पर आधारित। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को और पढ़ना शुरू करते हैं आपकी फरमाइशों को जो कि आपने भेजी है आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर और व्हाट्सएप संदेशों के द्वारा।

जो पहली फरमाइश आई है हमारे पास वो आई है राम सरन की। मोहम्मद फरहान ने भी हमें फरमाइश भेजी है एक प्यारे से लोकगीत के लिए, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। आपके साथ साथ मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने भी एक अवधि लोकगीत के लिए फरमाइश भेजी है। सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, स्वाति जायसवाल, दीपक जायसवाल ने हमें फरमाइश जमानिया गाजीपुर से भेजी है और नारायण लाल साहू ने हमें फरमाइश भेजी है बलेश्वरी रेडियो श्रोता।

इनकी ओर से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आपके साथ साथ कुलवंतीन देवी साहू, नेहा देवी साहू, यशोदा देवी साहू और दिलेश्वरी साहू, भोज केकती आदि ने भी इस प्यारे से लोकगीत के लिए फरमाइश भेजी है। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी की फरमाइश आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। आपके साथ साथ लक्ष्मी देवी गोस्वामी, योगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा ने भी फरमाइश भेजी है। तो आइए सुनते हैं अनिता श्रीवास्तव और उनकी सखियों की आवाज में ये प्यारा सा पर्यावरण गीत।

कार्यक्रम चल रहा है लोक रंग और अगली जो फरमाइश आई है हमारे पास वो आई है विजय यादव जौनपुर उत्तर प्रदेश से। आपके साथ साथ कैलाश यादव ने भी इसी प्यारे से गीत के लिए हमें फरमाइश लिखकर भेजी है।

अगली जो फरमाइश है वो आई है हमारे पास तक विष्णु टेलर की, रितिका मिस्किन, वाणी अर्णव, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता, रोही, प्रियांशी, सोनी की। आप सभी ने दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से हमें अपनी फरमाइश भेजी है। अशोक डाले ने हमें कुंभार गली श्रीरामपुर से अपनी फरमाइश भेजी है। आपके साथ साथ सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, पुनावले, पुणे से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा ने इसी प्यारे से लोकगीत के लिए हमें फरमाइश की है। तो आइए सुनते हैं सुषमा गुप्ता और उनकी सखियों की आवाज में ये प्यारा सनकटा।

कार्यक्रम चल रहा है लोक रंग और आपकी फरमाइशों के लोकगीत आज बज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर। और अगली जो फरमाइश है हमारे पास वो आई है उत्तर प्रदेश से अमानतुल्ला खान, हिना खान, असलम खान, परवेज आलम, अनवर उल हसन और तारिक मिस्त्री की। इसी लोकगीत के लिए कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय ने भी हमें संदेश भेजा है। और इसी प्यारे से लोकगीत के लिए विजय सुलरकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर ने मोताला महाराष्ट्र से हमें ये संदेश भेजा है। अगला जो संदेश है वो उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे पास तक आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं भीरूलाल वागतरिया धाकर, भोला वागतरिया, प्रवीण वागतरिया, रियांश और प्रतीक वागतरिया। आप सभी ने सुनना चाहा है ये प्यारा सा अवधि लोकगीत जिसमें आवाजें हैं रत्नेश द्विवेदी और साथियों की। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा पारंपरिक गीत।

और इसी प्यारे से लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग यही संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं आपके फेसबुक कमेंट्स पर आधारित कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, आकाशवाणी अयोध्या।
3: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो।

0: ये है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।

स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में, और आपके साथ हूँ मैं आपकी खास दोस्त नेहा तिवारी। और इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ते हैं आपके कमेंट्स को जो कि आप भेजते हैं आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर। तो आइए शुरू करते हैं आपके कमेंट्स को पढ़ने का सिलसिला। देखते हैं किसने भेजी है आज के कार्यक्रम की पहली कमेंट। पहली कमेंट आई है हमारे पास पांकुड़ झारखंड से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं उत्तम कुमार भगत। मोहम्मद फरमान ने जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमें संदेश भेजा है। सुरेश जायसवाल का संदेश आया है जमानिया जिला गाजीपुर से। रविंद्र सिंह छाबड़ा ने हमें लिख भेजा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। वेद प्रकाश मिड्डा की कमेंट है जो कि आई है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। अरविंद कुमार ने हमें लिख भेजा है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। और गजानन येली की कमेंट आई है हमारे पास तक सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से। योगेश सर्वा ने हमें कमेंट भेजी है उरेठा डोंडी लोहारा जिला बालोद से। और ओम प्रकाश राय ने हमें लिख भेजा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से। विक्रम मालवीय की अगली कमेंट है जो कि आई है हमारे पास तक आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से। और इंजीनियर फैसल इमाम ने हमें अपना संदेश भेजा है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हमें यह संदेश आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता है रवि कुमार राहुल और विष्णु टेलर ने हमें अपना संदेश भेजा है दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर से। शिव चौहान का अगला संदेश है जो कि बाबा कुटीर रायगढ़ से हमारे पास तक आया है। और कमल शामनी ने हमें लिख भेजा है नागपुर महाराष्ट्र से। जाकिर मंसूरी की कमेंट आई है हमारे पास तक।

माफ कीजिएगा, बाजार रोड मुंगीसापुर से और सतीश अनेजा ने हमें लिख भेजा है चंडीगढ़ से। तो आइए आप सभी की पसंद पर एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म याराना से। आवाज है प्यारी सी किशोर कुमार की। तो लीजिए एंजॉय करिए प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा और आप है अपने दोस्त नेहा के साथ और कार्यक्रम में है आपकी ढेर सारी कमेंट्स और अगली जो कमेंट है वो है सतीश अनेजा की आई है हमारे पास तक चंडीगढ़ से। संजय ढींगिया ने हमें लिख भेजा है बागपत उत्तर प्रदेश से और महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी की अगली कमेंट है जो कि हमारे पास तक आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। राजेश कुमार वर्मा ने हमें लिख भेजा है राजनाथ पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से और अरुण कुमार मालवीय का संदेश हमारे पास तक पहुंचा है बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से। राजेश बनासिया ने हमें अपना संदेश भेजा है भाऊखेड़ी जिला सीहोर से और जगमोहन सिंह प्रजापति ने हमें अपना संदेश भेजा है गांव लोहडडा जिला बागपत से। दिशा हुसैन की अगली कॉमेंट है जो कि मुबारक

रुचिता की आजमगढ़ से हमारे पास तक आई है और रुत्रा दिवाकर ने हमें लिख भेजा है पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से। निसार सलमानी की कमेंट आई है धनौरे तिलईवाला उत्तराखंड से और फागुराम यादव ने हमें अपना संदेश भेजा है संबलपुर कांकेर से। उमा सिंह ने हमें अपनी प्यारी सी कमेंट भेजी है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से और आफताब अंसारी का संदेश हमारे पास तक आया है शेरवानी स्कूल गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से। नीलू मेघ ने हमें लिख भेजा है राजधानी रायपुर से और प्रवीण शेरमाली ने हमें अपनी कमेंट भेजी है कवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। मसरूर हसन का अगला संदेश है जो कि हमारे पास तक आया है कुम्हारखेड़ा सहारनपुर से और विनोद मंडलकर ने रायपुर छत्तीसगढ़ से हमें कमेंट भेजी है। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा की अगली कमेंट है जो कि आई है बने बुजुर्ग पलीरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से और सुनील पाठक ने हमें अपना संदेश भेजा है अनारकली बाजार जगराव से। धर्मेंद्र छीपा ने हमें अपना संदेश भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से और रियासत हुसैन सिद्दीकी की कमेंट आई है जसपुर उत्तराखंड से। राहुल मनवर ने हमें अपनी कमेंट भेजी है यवतमाल से और दिनेश वर्मा की अगली कमेंट है जो कि रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे पास तक आई है। हुकुम करमरकर की कमेंट आई है बेरनी मध्य प्रदेश से और प्रमोद कुमार साहू ने हमें लिख भेजा है बोर्ड सरार नैला छत्तीसगढ़ से। विजय सुरलकर ने हमें मोताला महाराष्ट्र से अपना संदेश भेजा है और बोधराज खोरवाल ने उत्तम नगर दिल्ली से अपना संदेश हमारे प्यास पास तक भेजा है। और इन प्यारे प्यारे संदेशों के बीच अब एक और गाने का समय हो चला है तो आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म ब्रह्मचारी से मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

और हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आकाशवाणी परिवार का और उनके श्रोताओं का जो प्यार है उसके भी चर्चे ही चर्चे हैं। आपके जो दूर दूर से संदेश आते हैं

प्यू मिगलानी ने हमें लिख भेजा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। सुमेंद्र यादव की कमेंट आई है शंकरपुर उसावा बदायूं से। और उदय भानपाल ने हमें लिख भेजा है रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। अनोखी लाल की कमेंट आई है कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से। और सुरेंद्र बौद्ध ने हमें लिख भेजा है कुंदुरखा कला पोस्ट किन्हूपुर से। जिला इनका अयोध्या है। और रामचंद्र माखीजा की कमेंट आई है हमारे पास तक छत्तीसगढ़ से। वीरेंद्र भगत ने हमें अपनी कमेंट भेजी है झारखंड से। और विनोद बरासा ने हमें लिख भेजा है खोखरा वाले श्री गंगानगर से। बनवारी जयपाल की कमेंट आई है हमारे पास तक आपने अपना पता नहीं लिखा है, तो अगली बार जब भी आप कमेंट करें तो अपना पता भी हमें जरूर लिखकर भेजें। नंद किशोर घट्टे की अगली कमेंट है जो कि बीड शहर महाराष्ट्र से हमारे पास तक आई है। और लक्ष्मण सिंह राजपूत ने हमें लिख भेजा है छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। ईश्वर मेहर ने मंदसौर मध्य प्रदेश से हमें अपना संदेश भेजा है। और राघव बघेल ने लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से अपना संदेश हमारे पास तक भेजा है। जीवन विश्वकर्मा की अगली कमेंट है जो कि आई है हमारे पास तक चाईबासा झारखंड से। और राजेंद्र नारंग ने हमें लिख भेजा है बटिंडा रोड मंडी डबवाली से। आर कुमार ने वडिन खेड़ा से हमें कमेंट भेजी है। और रामकुमार रेवार की कमेंट आई है हमारे पास तक सादुल शहर राजस्थान से। राजकुमार डोंडी ने गांव फरासी जिला हिसार से हमारे पास तक अपनी कमेंट भेजी है। और माखन वर्मा ने हमें लिख भेजा है अनार नांद घाट छत्तीसगढ़ से। राष्ट्रपाल गजभय ने छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से अपना संदेश भेजा है आकाशवाणी अयोध्या को। और देवेंद्र कुमार गुप्ता की कमेंट आई है उगहती बंदायू से। माधो नामदेव की कमेंट आई है जबलपुर मध्य प्रदेश से। और मोहम्मद कलीम अंसारी ने गंज जुंडवारा से अपना संदेश हमें भेजा है। रोशन देवगन ने संदेश भेजा है हमें भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। और नरेंद्र शर्मा जेटली की कमेंट आई है हमारे पास तक कलानौर से। चंद्रकांत साहू की कमेंट धमतरी छत्तीसगढ़ से आई है। और राजपाल ने हमें लिख भेजा है आदर्श नगर मलौद से। और इन सभी कमेंट्स के बीच आइए एक और प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म गीत गाता चल से। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का और आवाज है जसपाल सिंह की। तो लीजिए एंजॉय करिए प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा और कुछ तुमने कहा में आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स हैं मेरे हाथों में और अगली जो कमेंट है वो है अनिल वर्मा की सदर बाजार कुरावली से। फहीम मंसूरी ने हमें अपनी कमेंट भेजी है बांदा से और सोहन जोशी का जो संदेश है वो हमारे पास तक आया है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। दीपेश वर्मा ने हमें लिख भेजा है ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से और गुरमीत सिंह मेहता की कमेंट आई है साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से। मोहम्मद यासीन ने हमें लिख भेजा है नई बस्ती गंज जुंडवारा से। अजीत कसाना की कॉमेंट हमारे पास तक आई है लदावली से। आशीष बारी ने हमें लिख भेजा है अयोध्या से और साथ ही साथ माफ कीजिएगा आपने अपना पता नहीं लिखा है, आपने एक बहुत ही प्यारा सा संदेश लिखा है कि आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमारे मोबाइल में कमेंट का ऑप्शन आया है और बहुत दिनों के बाद कमेंट कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से और बड़ी ही प्यारी सी लाइंस लिखी है सदा दूर रहो आप गम की परछाइयों से, सदा दूर रहो आप गम की परछाइयों से, सामना ना हो कभी तन्हाइयों से, हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, यही दुआ है हमारी आपके लिए दिल की गहराइयों से। क्या बात है, बहुत ही प्यारी प्यारी लाइन से और सेम यही लाइन से हम कहना चाहेंगे आप सभी से, हम अपने सारे श्रोताओं से कि आकाशवाणी परिवार हमेशा ही यही चाहेगा कि आप सभी हमेशा खुश रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और आकाशवाणी अयोध्या को लगातार सुनते रहें और अपने प्यारे प्यारे संदेशों को भी हमें लगातार भेजते रहें। और अगली बार आशीष बारी जी आप अपना पता भी हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। सदानंद मंदुरकर का संदेश आया है हमारे पास तक डाबकी रोड अकोला से और आर्यन राज ने हमें लिख भेजा है मुजफ्फरपुर बिहार से। खिल्लू परवेज की कमेंट आई है हमारे पास तक हरदोई रोड उत्तर प्रदेश लखनऊ से और अशोक वर्मा ने हमें लिख भेजा है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। पुखराज बड़गुजर ने ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हमें अपना संदेश भेजा है और सुदर्शन शाह का संदेश हमारे पास तक आया है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। और कार्यक्रम में एक और प्यारे से गीत का समय हो चला है तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घर से ये प्यारा सा गीत जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है आर डी वर्मन ने। उम्मीद है आपको ये प्यारा सा गीत जरूर पसंद आएगा तो लीजिए एंजॉय करिए ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम चल रहा है, आप कुछ तुमने कहा और आपके जो कमेंट्स हैं वो पहुंच चुकी है हमारे पास तक। और अगली जो कमेंट है वो आई है हमारे पास तक धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं अशोक सिंह, बरवट बकाल बुढ़ डाड़ा से हमें कमेंट भेजी है नारायण हागे ने। और अंकुर अरोरा की कमेंट आई है हमारे पास तक खुर्जा उत्तर प्रदेश से। रणधीर गुप्ता की कमेंट आई है हमारे पास तक ओखला संगम विहार दिल्ली से। और दत्तर सिंह ने हमें लिख भेजा है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से। मंगल जनंगल राय ही की कमेंट आई है हमारे पास तक पतरोड़ा से। और एसके अलबख्श ने हमें लिख भेजा है तेलंगाना निजामाबाद से। हरजिंदर छींदा ने गांव नथाना पंजाब से हमें अपना संदेश भेजा है। और बी कमल का संदेश आया है मजनू का टीला से। नादान कुमार सिंह ने हमें अपना संदेश जिला बेगूसराय बिहार से भेजा है। और बनवारी लाल कुशवाहा का संदेश आया है हमारे पास तक चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। रुपेश संघई की कमेंट आई है हमारे पास तक महाराष्ट्र से। और दीपक साक्या ने अलीगंज जिला एटा से हमें कमेंट भेजी है। मुकेश गौतम का संदेश चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से हमारे पास तक पहुंचा है। और धीरज भाई ने हमें लिख भेजा है गुजरात पाटन से। विनय मोहन ने सेक्टर 18 जगाधारी जिला यमुनानगर हरियाणा से हमें अपना संदेश भेजा है। और हीरामणि वर्मा का संदेश आया है हमारे पास तक दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। टीडी मल्होत्रा का अगला संदेश है जो कि सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमारे पास तक आया है। और जॉन डिक्रिस्टो ने हमें लिख भेजा है जनकपुरी सहारनपुर से। बीके हिते इंद्र पाल ने हमें अपना संदेश असम से भेजा है। और नबी हसन अब्बासी का संदेश हमारे पास तक आया है मार हर दरवाजा एटा से। सीताराम कागरा का संदेश हमारे पास तक आया है एकता कॉलोनी रोहतक से। और संदीप कुमार ने हमें लिख भेजा है चौक गुराया जालंधर से। राजेश वर्मा का संदेश लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हमारे पास तक पहुंचा है। और तुलसीदास चुगमस्कीन ने हमें पंचकुला चंडीगढ़ से अपना संदेश भेजा है। और कार्यक्रम में अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म ममता से। प्यारी सी आवाज है लता मंगेशकर की, गीत को लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने और संगीत है रोशन का। लीजिए एंजॉय करिए प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम चल रहा है, कुछ तुमने कहा और कुछ तुमने कहा। मैं है आपके दोस्त आपके साथ नेहा, और अगला जो संदेश है मेरे हाथ में वो आया है हमारे पास तक चरौदा नवापारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर का। सदाशिव थुरात ने हमें लिख भेजा है तहसील पूर्णा महाराष्ट्र से, और प्रेम सिंह वारवाल की कमेंट आई है हमारे पास तक राजस्थान से। तुलसी मस्कीन ने गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हमें कमेंट भेजी है। सुखविंदर सिंह जौड़ा कृष्णा पार्क दिल्ली से हमें अपना संदेश भेज रहे हैं। सतेंद्र चंसौलिया ने अपना संदेश हमारे पास तक भेजा है ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से, और राजेश अश्रुबा साबले ने हमें अपना संदेश भेजा है छत्रपति संभाजी नगर से। बिट्टू भाटिया की कमेंट आई है सब्जी मंडी झज्जर से, और फहीम मंसूरी ने बांदा यूपी से हमें अपना संदेश भेजा है। संतोष खड़से ने हमें अपना संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ।

महाराष्ट्र से और दुर्गाराम साहू का संदेश आया है चरडोगरी पिपरिया जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से। सुरेंद्र खुराना ने अपना संदेश भेजा है मुल्तान नगर दिल्ली से और सुधीर नूतन ने हमें लिख भेजा है मॉडल टाउन करनाल से। राशिद हुसैन अंसारी की कमेंट आई है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से और मुकेश कश्यप ने जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से अपनी कमेंट भेजी है। नीतीश कुमार देवगन ने पलारी छत्तीसगढ़ से हमें अपनी कमेंट भेजी है और एम हफीज ने हमें लिख भेजा है पंजाब डिस्ट्रिक्ट बखर से। मुकेश कश्यप की कमेंट आई है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से और रमनेन्द्र भूषण पांडे ने हमें कहां से लिखा है, इन्होंने अपना पता नहीं लिखा है, आपका नाम शामिल हुआ है कार्यक्रम में, अगली बार अपना पता भी जरूर लिखिएगा। बिट्टू भाटिया ने हमें लिख भेजा है झज्जर हरियाणा से। और अब समय है कार्यक्रम में एक और प्यारे से गीत का, तो लीजिए फिल्म गैंगस्टर से केके की आवाज में ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे आपके फेसबुक कमेंट्स पर आधारित कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है अयोध्या आकाशवाणी @gmail.com।

0: HYAAKASHVANI@gmail.com
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि और आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त नेहा। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज में ये प्यारा सा गीत।
5: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

कार्यक्रम चल रहा है गीतांजलि, और गीतांजलि में जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें आवाज है शंकर महादेवन की, तो लीजिए एंजॉय करिए प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम चल रहा है गीतांजलि और आप हैं अपनी दोस्त नेहा के साथ, और कार्यक्रम में जो हम अंतिम गीत सुनवाना चाह रहे हैं वो है नुसरत फतेह अली खां की आवाज़ में। तो लीजिए ये सुनिए प्यारा सा गीत।

0: और इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम गीतांजलि यही संपन्न होता है, पर कहीं मत जाएगा, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार और उसके बाद ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम मांगना। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि, आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। दोपहर के 2:15 होने को है, आइए सुनते हैं दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू, भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल GST संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज, अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय

0: बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफिन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक ऋण दिए गए हैं।

0: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थाई आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55 लाख से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपए होगी। मुंबई में 43.50 रुपए की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपए होगी। कोलकाता में 53.50 रुपए की वृद्धि के साथ व्यवसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपए होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया

0: क्यों नहीं?
1: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
2: या हमें ईमेल करें अयोध्या आकाशवाणी @gmail.com पर।

यदि अपने दायित्वों के साथ कुछ मूलभूत जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ या विफल होने पर अदालत कानूनी रूप से अभिभावक नियुक्त करती है, जिसे हम कानूनी अभिभावक कहते हैं। इन्हें भी प्राथमिक अभिभावक की तरह सभी अधिकार, जैसे बच्चों के आश्रय, स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, दैनिक आवश्यकताएं एवं संपत्ति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जो कि बच्चों के हित में हो, ना कि आपके हित में। अदालतें कई अलग अलग परिस्थितियों पर विचार करके बच्चों के सर्वोत्तम हित का निर्णय करती है, उसके बाद ही कानूनी अभिभावक नियुक्त करती है। माता पिता बच्चों के जीवन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और बच्चे कच्ची मिट्टी के समान। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को आकार देकर सुंदर पात्र बनाता है, उसी प्रकार माता पिता और अभिभावक बच्चों के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। बच्चे केवल परिवार की खुशी ही नहीं होते, देश का भविष्य भी होते हैं। इसलिए उनका सही से पालन पोषण और मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आधुनिक तकनीक, मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। ऐसे समय में अभिभावकों की जिम्मेदारियां पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। अभिभावकों का प्रथम कर्तव्य बच्चों को प्रेम और सुरक्षा देना। प्रत्येक बच्चा चाहता है कि उसके माता पिता उसे समझें, उसका साथ दें और उसे सुरक्षित महसूस कराएं। कई बार माता पिता अपनी व्यस्त जिंदगी में बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। वे सोचते हैं कि अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े, महंगे खिलौने देना ही उनका कर्तव्य पूरा करना है। लेकिन सच ये है कि बच्चों को सबसे अधिक आवश्यकता अपने माता पिता या अभिभावक के प्यार, समय और भावनात्मक सहयोग की होती है। जब बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी बातें साझा करना चाहते हैं, तब यदि माता पिता मोबाइल या काम में व्यस्त रहें, तो बच्चा धीरे धीरे अपने मन की बातें छिपाने लगता है। यही दूरी धीरे धीरे आगे चलकर बड़े मानसिक तनाव का कारण बनता है। अभिभावक का दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य, अच्छे संस्कार देना। बच्चे वही सीखते हैं जो अपने घर एवं आसपास के वातावरण में देखते हैं। यदि घर में बड़ों का सम्मान, मधुर वाणी और दूसरों की सहायता की जाती है, तो बच्चे भी वही आदतें अपनाते हैं। इसके विपरीत यदि घर में क्रोध, निराशा, झगड़े या अपशब्दों का इस्तेमाल जैसा वातावरण हो, तो उसका नकारात्मक प्रभाव बच्चों के मन पर पड़ता है। आज समाज में नैतिक मूल्यों की कमी की चर्चा अक्सर होती है। इसका समाधान केवल स्कूलों में नहीं बल्कि घरों में छिपा होता है। माता पिता यदि बच्चों को ईमानदारी, अनुशासन, दया, सहनशीलता और जिम्मेदारी का पाठ सिखाएं, तो वे भविष्य में अच्छे नागरिक बन सकते हैं। प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा नागरिक बने, परंतु गलतियां कहां पर हो रही हैं, इसको समझना जरूरी है। आजकल प्रतियोगिता का दौर है। हर माता पिता या अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में सबसे आगे रहे, लेकिन कई बार अनजाने में वे बच्चों पर इतना दबाव डाल देते हैं कि बच्चे तनाव, डर व अवसाद का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अभिभावकों का ये भी कर्तव्य है कि वे बच्चों की क्षमता व रुचि को समझें। हर बच्चे में अलग अलग तरह की योग्यता व क्षमता होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा, कोई खेल में, कोई संगीत या कला में अच्छा, तो कोई पाक कला या अन्य में। उचित है कि बच्चों में अपनी इच्छाएं थोपने के बजाय उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कई बार हम सुनते हैं कि कुछ बच्चे तनाव, डर व मानसिक दबाव के कारण गलत कदम उठा लेते हैं, तो कुछ बच्चे अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है संवाद की कमी। जाने अनजाने उनके बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं अगर बातचीत नहीं होती है। इसलिए अभिभावक को चाहिए कि बच्चों के साथ कभी कभी मित्र की तरह व्यवहार करें, ताकि बच्चा बिना डर के अपनी परेशानियों को साझा कर सके और उन बातों को भी साझा करे जिसे कहने में बच्चे को हिचकिचाहट महसूस होती है। तीसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य, अनुशासन और स्वतंत्रता में संतुलन। यदि बच्चों को बहुत अधिक कठोरता से रखा जाएगा, तो वे डरपोक या विद्रोही बन सकते हैं। वहीं यदि उन्हें पूरी तरह से मनमानी करने दी जाए, तो वे अनुशासनहीन हो सकते हैं। इसलिए अभिभावकों को प्रेम के साथ अनुशासन भी सिखाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि बच्चा गलती करे, तो उसे अपमानित करने या दूसरों के सामने डांटने की बजाय प्यार से समझाएं। बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि उनके माता पिता या अभिभावक उन्हीं की भलाई के लिए उन्हें सही दिशा व मार्गदर्शन दे रहे हैं। वर्तमान समय में मोबाइल, इंटरनेट व दिखावा सभी के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। बच्चों

0: को तकनीकी चीजों का सही उपयोग सिखाएं। इंटरनेट ज्ञान का भंडार है, इसका गलत उपयोग बच्चों को गलत दिशा में ले जाकर उनका भविष्य बिगाड़ सकता है। उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें। बुरी संगति, नशा, इंटरनेट का गलत उपयोग, इन सब पर भी बात करते रहना जरूरी है। अक्सर माता पिता व्यस्त जिंदगी, शारीरिक व मानसिक थकान की वजह से थोड़ा खुद को आराम देने के लिए भी मोबाइल बच्चों को थमा देते हैं। मोबाइल दीजिए लेकिन टाइमर लगाकर, जिससे मोबाइल या इंटरनेट उपयोग करने की समय सीमा उन्हें पता हो। श्रोताओं, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ पौष्टिक आहार, नियमित दिनचर्या और शारीरिक खेल कूद के लिए भी उन्हें प्रेरित करना चाहिए। साथ ही तनाव मुक्त और खुशहाल वातावरण देना भी आवश्यक है, क्योंकि यही नौनिहाल आगे चलकर आपके भविष्य का भी निर्माण करेंगे। माता पिता एवं अभिभावक को खुद भी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है, तभी वो इस तरह के खुशहाल वातावरण को सफल बना पाएंगे। कहते हैं बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है और उसके पहले शिक्षक उसके माता पिता। इसलिए अभिभावक अपने कर्तव्यों को समझदारी और प्रेम से निभाएं, तो बच्चे न केवल सफल इंसान बनेंगे बल्कि अच्छे चरित्र वाले नागरिक भी बनेंगे। इन सब के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का भी आभास कराना जरूरी है। उन्हें सिखाना चाहिए कि समाज में महिलाओं, पुरुष, वृद्ध व बच्चों का सम्मान करना जरूरी है, जरूरतमंदों की मदद एवं पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए। ऐसे संस्कार ही बच्चों को संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान बनाते हैं। हमें ये समझना होगा कि बच्चों को केवल सुविधाएं देना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें समय देना, उनकी भावनाओं को समझना, सही मार्गदर्शन देना, नैतिक और जीवन मूल्यों से जोड़ना ही सच्चे अभिभावक का कर्तव्य है। एक अच्छे समाज और उज्जवल भविष्य की शुरुआत घर से होती है। यदि हर अभिभावक अपने बच्चों को प्रेम, संस्कार और सही दिशा दें तो हमारा समाज और देश दोनों मजबूत बन सकते हैं। आज समाज में बढ़ती हिंसा, झूठ और स्वार्थ की भावनाओं को रोकने के लिए बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना बहुत आवश्यक है। जिन बच्चों को माता पिता शारीरिक व मानसिक परिश्रम करके खुद को पीड़ा देकर जन्म देते हैं, बचपन से लेकर युवावस्था तक के हर अवसर को अपने कैमरे में कैद करके रखते हैं, उनके भविष्य के सपने संजोते हैं। अभिभावक की जरा सी लापरवाही एवं व्यस्त जिंदगी के कारण बच्चे बुरी संगति, डर, निराशा, अवसाद एवं नशे की तरफ अग्रसर हो जाएं, तो उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था आपको उतनी ही पीड़ा देगी जितना जन्म के समय होती है। प्यार, स्नेह व सम्मान तो सभी को चाहिए होता है, बस प्रयत्न करना जरूरी है। अंततः सभी श्रोताओं से यही कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर या अन्य प्रोफेशन तो सभी अपनी योग्यता के बलबूते बन जाते हैं। अगर नींव अच्छे इंसान होने की नहीं बनेगी तो समाज में माता पिता या अभिभावक का सम्मान किस तरह से होता है, ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। समय, पैसा, साथ व सहयोग सब कुछ आवश्यक है, खुद के निर्माण के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, राष्ट्र व समाज के लिए। परंतु समय रहते हुए यदि बच्चों के प्रति जो भी कर्तव्य, जिम्मेदारियां, अधिकार हैं, उनका इस्तेमाल के बारे में नहीं जानेंगे तो न आप सुखी रह पाएंगे और न आपके बच्चे। आपका साथ, आपके बच्चों का विकास।
1: अभिभावक का बच्चों के प्रति कर्तव्य और बतावत रही रूपम श्रीवास्तव बहनी। तो मैंने देखो कितनी अच्छी जानकारी है, उम्मीद रही आपको सबका जरूर अच्छा लाग हुई। और देखो बच्चन का अपने भाई प्यार दुलार दें, लेकिन उन्हें अनुशासन में भी रखना जरूरी है, जो उन्हें एक आदर्श नागरिक बने। तो भाई अपने कार्यक्रम में बनी रही है, मिली थे छोटे से अंतराल के बाद।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
8: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे, अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
7: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
8: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
9: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
4: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से

0: प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से हाजिर है आपके रेडियो सखी आरती। तो क्यों बहने, कितनी अच्छी अच्छी जानकारी भी हुई, बात बात की भी हुई। अब सखी जो ने इशारा कर रही थी कि खूब लिख के गीत भी हो जाए अपने अंगनैया माँ, तो भाई देखो खूब सुंदर सा गीत शारदा सिन्हा बहनी की आवाज में सुना जाए आप सब।

पप्पा भाई देखो कितना सुंदर गीत रहा, और हमें लागत है कि जो सगरो सखी बैठी नगनैया में सब लोग झूमे लाग ही, और भाई जो भी कार्यक्रम शुरू थे वो झूमे लाग हुई, गीत ही सुन रहा है। तो भाई देखो गीत गाने के बिना अपन जीवन नीरस है ना, अगर गीत है जिंदगी में तो जानो बहुत ही अच्छा है। कोनो भी चिंता फिक्र हो तो हम सब उकर जुने तनकी देर भले ही लेकिन भूल जाए थे है ना सगरो परेशानी का। तो मैंने देखो आज एक और तिथि है, आज है नीलम संजीवा रेड्डी जी के पुण्यतिथि, जो उनकी अपने भारत के छठे राष्ट्रपति रहे हैं। आपके जन्म 19 मई 1993 का आंध्र प्रदेश में भय रहा। आप बहुत ही सादगी पसंद और ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। राष्ट्रपति बने से पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। आप अपने देश प्रेम के चलते भारत माता के जीवन भर सेवा किए, देश का आगे बढ़ावा में हर संभव योगदान दिए और 1 जून 1996 का बेंगलुरु में आपका निधन भय रहा। तब से ही हर साल आज के दिन का पुण्यतिथि के रूप में मनावा जाता है। आपके त्याग बलिदान हम सबका सिखावत है कि कैसे ईमानदारी और सादगी से देश के सेवा करे के चाहिए। भारत माता के सपूत का हम सब कोटि शरण नमन करी थे। तो बने देखो आज है सोमवार, तो आप सबका इंतजार हुई कि रसोई में आज कौन खास व्यंजन बनावा जाए। हम देखे थे सगरो सखी भाई कागज कलम लेके बैठी ही, तो बिना देर किए जल्दी से आप नोट करें इमली बड़ा कैसे बनावा जाए ओके सामग्री। तो भाई देखो ओके सामग्री है, ये मौसम में देखो कुछ ऐसा मिल जाए ना जो उनकी खाए से कुछ स्वाद बढ़ जाए और सेहत भी मिले है ना। तो इमली आप सुन के सोचे थे कि इमली में कौन से पोषक तत्व है। देखो बहनों भगवान की बनाई धरती पे ना हर चीज बहुत ही गुणकारी होते बशर्ते का हमें अच्छे से उपयोग करने के चाहिए। और ये पारंपरिक व्यंजन भी है, हमें याद आ रहा था कि बचपन में दादी का अक्सर बनावा था, गर्मी में हम सब खूब खाते रहे इमली बड़ा। तो भाई देखो 2 महीने बदे ये सामग्री हम बताई थे लेकिन आप अपनी जरूरत हिसाब के से बढ़ा सके थी। सामग्री है 1 कप बेसन, 3 इमली के गुदा, 3 बड़ा चम्मच गुड़ ओका तोड़ लें, और फिर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, काला नमक स्वाद के हिसाब से और सादा नमक स्वाद के हिसाब से, तले खातिर तेल। बनावे के विधि है इमली के पानी का तैयार करें और गुड़ और इमली का नीक मिर्च से पीस लें, छान के ओका जो है लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक मिला के रख दें। अलग से एक बड़े बर्तन में बेसन नमक पानी डाल के गाढ़ा घोल बना लें और कढ़ाई में तेल गरम करें, छोटी छोटी पकौड़ी नीक मिर्च से बनाए के अलग से एक बड़े बर्तन में पानी डाल दें और फिर जो पकौड़ी है ओका तल के उम्मीद थोड़ी देर के लिए रख दें जो मुलायम हो जाए। फिर ओके पानी का निचोड़ के वो इमली के पानी में डाल दें और 15-20 मिनट के बाद यह का परोसे। ऊपर से आप अगर खात ही प्याज तो महीन प्याज डाल दें, थोड़ा सा हरी धनिया डाल दें और जो है भुजिया नमकीन जो है तो वह का आप डाल के खा सके, थोड़ा खाए में अच्छा लगा था और स्वाद भी बढ़ जाता है। तो मैंने दो चटपटी इमली बड़ा जो मैं बनावे के संदेश में अपन जो प्रतिक्रिया हो तो वह जरूर भेजें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखो ये गीत जो है सुने सुंदर सा।

0: बेनो आपसे बतियात बहना, समय कितनी जल्दी बीत जाते पता नहीं चलते। मुला कोनो बात नहीं, अगले कार्यक्रम में निक निक की तो रुचक जानकारी के लेके फिर से हाजिर हूँ। तब तक खातिर आरती का देवनमति नमस्कार।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम अंगना, आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: कहिए कैसी है मंजरी जी आप?
1: बस यही कहेंगे ना कि हमेशा की तरह बिल्कुल मस्त अच्छे से।
0: हाँ जी, वो तो आपको देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है आप खुश लग रही हैं, बहुत ज्यादा फ्रेश लग रही हैं।
1: जी धन्यवाद।
0: और मुझे लगता है कि जब से मैं सुबह से आपको देख रही हूँ, आप तरह तरह के गीत निकाल रही हैं, कभी किसी गाने को पसंद कर रही हैं, कभी नहीं कर रही हैं, तो संगीत के बीच में रहकर भी आदमी जो है एकदम अपने आप को फ्रेश पाता है, ताजा महसूस करता है।
1: गीत संगीत की दुनिया ऐसी है कि आप कितने भी उदास हो, आप गीत सुन लीजिए, आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी उदासी आपके पास से कब कहां किधर चली गई, अगर आप बिल्कुल दिल से सुनते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा मंजरी। हाँ, लेकिन एक उदासी का सबब आज तो हमारे मन में है।
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल वही हम कहने वाले थे कि जब हमारे बीच से कोई चला जाता है और जब अच्छे अच्छे गायक गायिका चले जाते हैं तो उनके ना चाहिए, उनके गाने हम सुनकर ही बड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो वो गाने हमेशा कानों में दस्तक देते रहते हैं और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो बहुत दुख होता है, आंखें भर आती है, दिल भर आता है।
0: बिल्कुल, कल मैं एक कार्यक्रम दे रही थी मंजरी, उसमें मैंने कहा कि किसी का जाना कैसा महसूस होता है हमें, जब हमारी जिंदगी से, विचारों से, हमारे दिल से, हमारे घर से कोई चला जाता है या दुनिया से चला जाता है तो हम क्या महसूस करते। और हमारे श्रोताओं ने इतने अच्छे विचार हम तक पहुंचाए थे कि मेरा गला भर आया था और आंखें नम हो गई थी।
1: नहीं, वो बात ही ऐसी है कि हम पढ़ते पढ़ते आज भी आंखें नम हो जाती है जब हम उन चीजों को याद करते हैं और जो हमारे बीच से अब चले गए हैं, और हम सब उनके परिवार के ही सदस्य कहना चाहिए। वो गाने गाते हैं और हम लोग सुनते हैं ध्यान से, तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एकदम जुड़े होते हैं।
0: और इस कार्यक्रम या इस नौकरी में हमने न जाने कितनी बार इन गायक और गायिकाओं को बजाया और खुद गुना उनके गानों को गुनगुनाया, उनके गानों को जिया हमने। मुझे याद है रफी साहब के इतने सारे गाने हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, लता जी के, आशा जी के, और आज जो सुमन कल्याणपुर को हमने खो दिया है, उनके गायकी जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे ही गले का कोई सुर जैसे चला गया है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा महसूस होता है, है ना? इतनी महान गायिका, इतनी शानदार गायिका जिन्होंने बहुत सादगी से अपनी आवाज को पेश किया, आप तक पहुंचाया और हर गीत को उतनी ही कोमलता के साथ, सादगी के साथ, उतार चढ़ाव के साथ गाया,
1: और उतनी ही उनका स्वभाव भी सादगी भरा था। बहुत ही सरल स्वभाव की महिला है वो थी, और जो आज हमारे बीच नहीं है, तो उनको हम सभी लोग और सभी विद भारती परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और हमारी सखी ने भी एक
0: कुछ लिखा है, बताइए हमारी सखी ने क्या लिखा है।
1: इन्होंने गाने की एक लाइन लिखी है कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। दुखद समाचार, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं है। आज 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का आज निधन हो गया है। और उन्होंने इतने साल उम्र मुंबई में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और उन्होंने पहले सुमन हेमदी नाम से गाने गाए थे, उनकी शादी के बाद उन्होंने सुमन कल्याणपुर के नाम से अपनी पहचान बनाई और गीतों को आवाज दी।
0: आवाज दी, बिल्कुल, और उनकी आवाज हमने जन जन तक पहुंचाई रेडियो के माध्यम से। तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सखी सहेली के इस मंच से, इस परिवार से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।

0: हाँ तो मंजरी, आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं, हमारी सखियाँ और सखा जानना भी चाहते होंगे।
1: बिल्कुल, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का, मुंगोड़ी वाला मटर का निमोना और धनिया की मट्टी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक अभिभावक दिवस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस भी आज है, तो दूध तो सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है सभी के लिए पीना, बच्चों के लिए खासकर बहुत जरूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आभूषण भाग एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ये आज सुनाई जाएगी और इसका भाग एक है, तो हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं।
0: चलिए तो पहले ही कहानी सुन लेते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी।

आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं दूषण कहना अधिक

0: उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधू को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौट कर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोग लिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
2: तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
1: तो गाली क्यों देते हो?
2: गाली नहीं देता, बात कहता हूँ। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
1: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
2: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूँ कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
1: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
2: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
1: सभी को होता है, मुझे भी है।
2: अपने को अभागिनी समझती हो?
1: हूँ ही, समझना कैसा, नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता।
2: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
1: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
2: नहीं, सच कहता हूँ, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
0: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में

0: कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्म त्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था, उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा। अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था, पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई, धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी, वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
1: यहाँ की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
2: अच्छा,
1: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहां चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
3: गहने बनवाता था कि नहीं?
1: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
3: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
0: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
2: चौधरी अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है।
3: हाँ है, तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
2: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
3: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
2: चौधरी मैं कोई गवार हूँ क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
3: अच्छा
2: जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है। मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोच कर चला गया, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1,000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है, फटकार बता दी।
1: मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों दत्त तेरे लालची।
2: 200 रुपए नहीं, 2,000 भी देता तो ना बताता,

0: मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
1: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
2: अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे। इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलो, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं। वहां तो गहनों से प्रेम है।
1: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से

0: वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
2: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे।

0: में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती। केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं और बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा है, है ना?
0: और उसका कारण भी है
1: मोबाइल और सोशल मीडिया, ये हमारी जिंदगी बन गए हैं, है ना? तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कि अगर हमने इतिश्री कर दी,
0: नहीं
1: ये वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें संदेश देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और मंदाकिनी जी हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव हैं जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है। उन्हें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो घर बच्चे की देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी है, चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे
1: पता ही
0: नहीं चलता था और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे। कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो। तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए नियम अनुशासन सिखाने की, तो उससे बच्चे सीखते थे और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तक को पता नहीं चलता था। लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है, आज हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जहाँ तक है एकल परिवार हो गए हैं। और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता है वो किसी केयर टेकर के उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है, मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे। वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने। और होता था कि जब माता पिता आते थे बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती बच्चों को जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य पालते हैं।
0: और देखिए, हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहाँ से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना। दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी,
1: बहुत सुंदर बात लिखी है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सपने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई, अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
1: वही एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बैठता, जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं। उनकी दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो, ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं। उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं, उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं और वैश्विक

0: हाँ,
1: तो देखिए अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा

0: अर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है, जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
0: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई तो तबीयत खराब हुई तो सीधे वो दूध को ही बोल देते, नहीं दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
1: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
0: कुछ समय तक तबीयत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
1: हाँ, ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है। दूध हमारे लिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है, आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता। और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
0: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती।
1: अरे, हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है
0: जी। और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन्स का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है। बेहतर रखता है कहना चाहिए।
1: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
0: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी, आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को दिला सकते हैं।
1: खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे है ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं, ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मुंगोड़ी 1 कप, मुंगोड़ी 1 कप, आलू
0: चाहिए आधा कप,
1: आलू 2 लंबे पतले कटे हुए, मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगोड़ी को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मुंगोड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें, उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भूने, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर ले, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मुंगोड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें, जब तक कि मंगोड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गरम मसाला छिड़कें। आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगोड़ी और निमोना तैयार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगोड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होती है और मेरी तो बहुत फेवरेट है।
0: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती हैं सखियां, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा पर मैंने भी इसको बना के देखा था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, 1/6 चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीजें ले सकते हैं कम या ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उसे ज्यादा पसंद करते हो। फिर आटा को तैयार करें, एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक

0: और मोयन और पिघलावा घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए। और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्टी के दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें पांचे, और इसको गर्म गर्म तेल में तलें। और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना, वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो
1: गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ।
0: जानी माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुखे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
3: जाओ जाओ जाओ किसी वैद को बुलाओ।
0: सेहत नामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
4: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा। बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
4: ठीक है।
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
4: हाँ जी।
0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
4: सही है।
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
4: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है। दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
0: अच्छा।
4: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू। वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें है, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
0: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
4: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे। उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना वो पेरेंट्स का काम है।
0: जी
4: ठीक है। इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे?
0: पेट में।
4: पेट में जाएंगे तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज में बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स आल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स आल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
0: अच्छा, ये जो

0: दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
1: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए
0: जी।
1: उसके पहले मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गौज होता है, गौज पीस, कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गौज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गौज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप वो सिंपल गौज पीस को पानी में डुबा के गीले गौज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से,
0: छोटे बच्चों की
1: एकदम छोटे बच्चों के लिए जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0-3 ईयर्स मतलब बचपन पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है जो बच्चे इंजेस्ट करे खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो,
0: बिल्कुल
1: उसके जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है, क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे,
0: ये हम सभी के मामले में करें।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: चाहे बच्चे हो,
1: बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटालिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
0: टेढ़े मेढ़े
1: घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले तब तक हम लोग चेंज नहीं करते, बट ऐसा नहीं होता है। माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजिली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए बच्चे हैं, उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूँ वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
0: चॉकलेट,
1: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी, सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा।
0: हाँ।
1: लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
0: ओके,
1: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है
0: तो हमको कहीं बाहर

0: नहीं होता है
1: yes.
0: बाहर इजीली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, वो साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

जी गाना हमने सुना हो, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है।

0: डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की।
1: हाँ जी।
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है। नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा।
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है इनामल की।
0: हाँ।
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक। उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है।
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके।
1: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते हैं।
0: लेकिन नस तक,
1: नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिनझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिनझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है,
0: जिसकी हमने चर्चा की।
1: एग्जैक्टली।
0: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
1: हाँ जी। उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं। अभी वो नस सड़ गई है।
0: हाँ।
1: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं।
0: ये बहुत खतरनाक है।
1: यस। फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
0: अच्छा।
1: पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर होता
0: होता है। हाँ।
1: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
0: सेम बात है।
1: सेम बात यहाँ पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहां से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं। हाँ, उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है। तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं,
0: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
1: एग्जैक्टली। नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो
0: जी।
1: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
0: बिल्कुल
1: ठीक है। तो वो सिक्रीशन कम होता है तो इसकी वजह से जो सलाइवरी

0: एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम हो गए. सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता है. इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं. इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है.
1: हाँ हाँ बिल्कुल, और सुबह उठते ही ब्रश करना बहुत जरूरी है. डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं. आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए हैं. हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को मजे से, अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही. आज के बच्चों में तो वो उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है. तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
0: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
1: जैसे पहले के बुजुर्गों का है.
0: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था. फाइबर्स बोलते खाने में बेसिक है, मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है. सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है. जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है. बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है. मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स ये बना है ये खाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: ये रूल होता था घर का. आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूँ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए,
1: ये तो खाना ही पड़ेगा.
0: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
1: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है.
0: हाँ उनके मुताबिक बन रहा है, ठीक है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए. हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, मुझे लग रहा है. इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ. 5 साल की बच्ची को लेके आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था. उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है. तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा. लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए, कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है.
1: ओहो,
0: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे तो. मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी.
1: बहुत सही है, बहुत सही है.
0: तो ये जो दुलार है ना,
1: ये बहुत नुकसानदेह है.
0: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए. इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है.
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद हम रूट कैनाल की बात करेंगे.
0: श्योरली. सो अभी किशोर दा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो.
1: क्या बात है, महबूबा.
0: दांतों में दर्द होता है तो नैनो से तो सावन बरस.
1: हाँ, सुनते हैं.

0: के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है।
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: यस yes.
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: यस yes.
1: इसके लिए रूट कैनल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहाँ पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं, सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं। एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
0: अरे बाप रे,
1: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
0: ओहो।
1: और ये होता है सस्ते के चक्कर में जब लोग भागते हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
0: बिल्कुल।
1: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है शरीर के मामले में कि जहाँ पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
0: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
1: एग्जैक्टली।
0: तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
1: एग्जैक्टली, मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ,
0: वही मैं जानना चाहता हूँ,
1: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 टू 130 पास्कल, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं, ये नंबर वाइज।
0: ये बहुत ज्यादा है।
1: बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है।
0: यस।
1: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल। जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस के एरिया की सफाई की जाती है, पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरिया अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइंफेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है। जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी 2 या 3 जड़े होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर। और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे। तो खाना चबाने का ऐसा कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी

0: कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है?
1: बिल्कुल
0: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा पा रहा हूं।
1: इसके बिना भी चल सकता है,
0: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी 1.5 गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर में, 1.5-2 महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था 1.5-2 महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ जरूरत थी उस घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाते हैं। तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
1: अच्छा,
0: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रेस्टोर इट्स फंक्शन।
1: ओके,
0: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
1: तो वो
0: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है।
1: ओके,
0: एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
1: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके, डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
0: सही बात है। और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है 1 मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज, तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
1: ठीक बात है,
0: इतनी सी बात होती है। पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है। और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
0: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
1: जी,
0: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहाँ पे हम लोग गा लेते हैं।
1: तो हमारे लिए भी गाइए।
0: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
1: जी।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है, तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है। परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के। क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं, दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों के अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं, और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है।
0: ओके।
1: उसके लिए बना है, लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है। बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत, या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है, वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
0: फ्लॉस के लिए वो
1: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है। अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं, एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है।
0: ओके।
1: जिसको अलाइनर्स बोला जाता है, तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है। और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा
0: जी,
1: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के, फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है,
0: हाँ।
1: तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में, अरेंजमेंट में।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचें अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com
1: सोनू निगम, शान, बाबुल सुप्रियो और साथियों की आवाज में 10 फिल्म सी अगला गाना आप तक। पंछी जालौनवी के लिखे हुए बोल को संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

जी संगीत के साथ कार्यक्रम शाम सुहानी से अब दीजिए अनुमति। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: न्यामाया राष्ट्रपतिः ऊ मिन् आऊ लाइन च अद्य नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यामा भारत देशयोः मिथः सुरक्षां संपर्कं च समेत्य देशद्वयोः संबंधानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्य अनन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय सहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता संधि CEPA इति अद्य क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं संधिः देशद्वयस्य आर्थिक रणनीतिक संबंधान् दृढयिष्यति। एकस्मिन् राष्ट्रीय दैनिक पत्रे प्रकाशिते लेखे श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं निधिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता संधेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशतं 98 मिता शुल्कमुक्ति कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः 6 वर्षाणि पूर्णानि अभवन्। श्रीमोदी अस्याः योजनायाः प्रशंसां विधाय अवदत् यत् पीएम स्वनिधि योजनया प्रतिभूतिं विना ऋण प्रदानं, वित्तीय समावेशनम् अपि च विकासस्य नवीन अवसराः प्रदत्ताः, येन लक्षशः पथ विक्रेति जनानां जीवने उन्नतिः समागता। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारम् अकरोत्। राज्यपालः RN रविः कोलकातायाः लोकभवने आयोजिते समारोहे 35 नूतन मंत्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कारितवान्। समारोहे मुख्यमंत्री वर्येण सह अन्य वरिष्ठ नेतारः अपि उपस्थिताः आसन्। नवनियुक्त मंत्रिभ्यः विभागानां आवंटनम् अनन्तरं भविष्यति। शपथ ग्रहण समारोहे स्वप्नदास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शकर घोष च शपथ वचनम स्वीकृतवन्तः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जाल पटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनं राजधान्यां नवदिल्ल्यां अभवत्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उप प्रधानमंत्री रक्षामंत्री च रिचर्ड माल्स उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्री सिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा संबंधः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत् यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। जलशक्ति मंत्री CR पाटिलः, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंहः च अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां जलानुसंधान विकास संबद्धां एकां कार्यशालां उद्घाटितवन्तौ। अत्रावसरे श्री

0: कारणेन इयं वृद्धिः जाता। पश्चिम एशियायाम् अमेरिका ईरानयोः गतिरोधः अपि अपरं मूल्यवृद्धिकारणं वर्तते। वस्तुसेवाकरस्य सकलसंग्रहः विगतमासे 3.2% संवर्ध्य 194,000 कोटिरूप्यकाधिकः अभवत्। विगते वर्षे मई मासे संग्रह 188,000 कोटिरूप्यकाणि आसीत्। गतमासे केन्द्रीय वस्तुसेवाकरस्य संग्रह 37,790,300 कोटिरूप्यकाणि अपि च राज्य वस्तुसेवाकरस्य सकलसंग्रह 45,043,000 कोटिरूप्यकाणि आसत्। एकीकृत वस्तुसेवाकरस्य संग्रह 150,990,000 कोटिरूप्यकाणि आसीत्। सर्वोच्च न्यायालयेन 5 न्यायाधीशानां नियुक्तिः कृता। अनेन सहैव मुख्य न्यायाधीशं समेत्य न्यायाधीशानां संख्या 37 संवृत्ता। न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवालः सामाजिक संचार पत्रे अवोचत् यत् राष्ट्रपतिना मुख्य न्यायाधीशस्य परामर्शानन्तरं सर्वोच्च न्यायालये 5 नूतन न्यायाधीशानां नियुक्तिः कृता। अवधेयं यत् केन्द्र प्रशासनेन विगते मासे एकम् अध्यादेशं प्रस्तूय विधो संशोधनं कृतमासीत्। हांगकांग नगरे आयोजितायां 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्णपदकानि 5 रजतपदकानि 4 कांस्यपदकानि च समेत्य 19 पदकानि विजितानि। पदकतालिकायां भारतेन द्वितीयं स्थानं प्राप्तम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 22तमायां एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां 10 स्वर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि प्राप्तवद्भ्यः भारतीय दलेभ्यः वर्धापनानि प्रदत्तानि। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् इमे युवानः भारतस्य कीर्तिं विश्वस्तरे प्रापयितुं निरन्तरं प्रयत्नं कुर्वन्ति। एतेषाम् उज्ज्वल भविष्याय प्रधानमन्त्रिणा शुभकामनाः प्रदत्ताः इति वार्ताः।
1: एफएम एंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गूंजे स्वर्गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95 59 24 42 04 और 78 00 37 22 22।

0: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: सहेंद्र राम मौर्य और साथियों के स्वर में सुनिए ये दादरा।

0: कालीचरण मिश्रा के स्वर में इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम गूंजे स्वरगांव से अब दीजिए अनुमति।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के, हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: पंचों जय हिंद। पंच भैया देखो आज है विश्व दुग्ध दिवस। एक शुरुआत पंच भैया 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन AFAO द्वारा की गई रही। पंचों एक उद्देश्य रहा कि जो विश्व खाद्य पदार्थ के रूप में दूध का महत्व दिए के बात के लिए ये दिवस 2001 से हर साल 1 जून का पूरे विश्व में मनावा जाता है। भैया यह दिन के दिन डेयरी क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक माना जाता है। यही संगठन के मुख्यालय इटली स्थित रोम में रहा है। यहीं से पूरे विश्व भर के क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालय चलावा जाते हैं। ये कार्यालय विश्व में लगभग 130 देशों में काम करते हैं। AFAO के संचालन हर सदस्य देश और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि द्वारा द्विवार्षिक सम्मेलन से किए जाते रहिया। इस सम्मेलन में 49 सदस्य देशन के एक परिषद के चुनाव करते हैं जौने के कार्यकाल 3 साल के पंच भैया रहत है और बारी बारी से जो सदस्य देश हैं एमा काम करते हैं और यह एजेंसी के जो नेतृत्व है महानिदेशक द्वारा किए जाते हैं। पंचों AFAO 8 विभाग मिलाए के बना है, जैसे कि कृषि और उपभोक्ता संरक्षण, जलवायु, जैव विविधता, भूमि और

0: जल विभाग, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, मत्स्य पालन और जलीय कृषि, वानिकी, कारपोरेट सेवा और तकनीकी सहयोग और कार्यालय प्रबंधन। तो यह तरह से यहाँ इतना विभाग जुड़ा है। पंचो दूध जोन बाना, शरीर का तमाम जोन पोषक तत्व हैं दे के साथ साथ अपने बीच के तमाम करोड़ों जन लोगन का रोजगार भी देते हैं। साथ ही बच्चा से लई के बूढ़ बुजुर्गन का रोज जरूरत के हिस्सा बना है दूध। यही कारण है कि एकरे महत्व का देखत भय विश्व स्तर पे यक पहचान दिवावे के साथ साथ डेयरी क्षेत्र का भैया खूब बढ़ावा दीन जाए, उसका सम्मान दीन जाए। एकरे लिए हर साल 1 जून का ये दिवस विश्व दुग्ध दिवस मनावा जाता है। यह दिन लोगन में दूध के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जाता है। वैसे भी दूध हड्डियन का मजबूत करत है, शरीर के विकास के तो बात न करो, एक साथ साथ ही इमा रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ावे के शक्ति रहत है। पंचों दूध एक पूर्ण आहार माना जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर और स्वस्थ समाज के लिए ये एक सशक्त आधार है। घर घर तक पोषण, स्वास्थ्य, समृद्धि के स्वयं धारा पहुँचावे वाले मेहनतकश किसान, पशुपालक, डेयरी संचालक सबका हम तो अपनी ओर से यह दिवस के ढेरों शुभकामना दी थे भैया। ऐसे ही दूध के उत्पादन बना रहे, सबका भरपूर मात्रा में खाए के लिए मिलत रहे। पूरे विश्व में स्वयं धारा ऐसे दूध के बहा करें और लोग खूब अच्छे से खाएं पिए, उपयोग करें। मूल भैया देखो अपने सब इस सब तो की नहीं जाए, एक साथ साथ अब मौसम के मारो भैया देखता हो, गर्मी पड़त या है ऐसा ही, तो मान लो बीचे खुचे आंधी आ जाती है, बूंदाबांदी हो जाती है, तो कबो कबो कुछ राहत मिल जाता है। मूल जोन भैया अपन पालतू जानवर है ना, चाहे वो गाय हैं, चाहे भैंस हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, इन्हों का ये गर्मी के मौसम में हमें सबका विशेष ख्याल रखने की जरूरत हुआ है। तो हम आज एक जानकारी लेके आवा ही लू और गर्मी में पालतू पशुओं का देखभाल और प्रबंधन। जानकारी दी है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा भैया और उनसे बातचीत की है निशा श्रीवास्तव। तो चलो सुना जाए ये बातचीत की कौनी मेर से अपने सब ध्यान रखी ताकि अपन जो पालतू पशु हैं वे स्वस्थ रहें और उत्पादन लाभ देते रहें।
1: देखो पंचो, इतना गर्मी पड़ता है और अपने सभी पशु पाले हैं, यह गर्मी माँ अपने पशुअन के देखभाल भी भाई बहुत जरूरी है। यह जानकारी बदे अपने स्टूडियो में आवा हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जो उनकी पशुपालन वैज्ञानिक देवकाली अयोध्या से हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके अपने स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब गर्मी बहुत है भाई, देखा अपने सभी जो पशु पाले हैं, अपने पंचे जो पशु पाले हैं, तो वह गर्मी माँ अपने पशुओं के देखभाल जो पालतू पशु हैं उनका कैसे कीन जाए, ये जोने से वह गर्मी से बचें, लू से बचें, तो सबसे पहले ये बतावा चाहें कि लू से कैसे बचा जाए।
2: देखिए इस समय गर्मी का मौसम है और तेज लू चलती हैं
1: जी,
2: टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ रहा है
1: जो
2: है, तकरीबन 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर अभी तक जा रहा है, इसके आगे भी टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। इस समय हमें अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है जिससे कि हमारे पशुओं का स्वास्थ्य न खराब हो और साथ ही साथ उनके दुग्ध उत्पादन पर भी असर न पड़े, क्योंकि इन गर्मियों में और इतने टेम्परेचर में पशु स्ट्रेस में आ जाते हैं जिसमें तरह तरह की उनमें बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना रहती हैं और इसके साथ साथ उनमें कई प्रकार की अलग से उन्हें इम्यूनिटी सिस्टम उनका वीक होने की संभावना रहती है। हमें इसमें और भी ध्यान रखना है कि कैसे उनको लू न लगे, उनमें हीट स्ट्रोक ना हो पाए या हीट स्ट्रेस ना हो पाए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हीट स्ट्रोक या स्ट्रेस बताएं हैं तो ये कैसे पहचाना जाए कि अपने पशुओं में ये समस्या है?
2: जी इसमें पहचानना काफ़ी आसान है। जैसे अगर आपका पशु डल, डिप्रेस या जैसे कि वो काफ़ी इधर उधर का में बैठ उठ रहा हो, ठीक से खा ना रहा हो, पानी ना पी पा रहा हो और इसके बाद अगले स्टेज में मुंह खोलकर जीभ निकालकर सांस ले रहा हो, मुंह से पानी बह रहा हो, मुंह में झाग बना रहा हो और तेज तेज से सांस ले रहा हो, ऐसे में हम उसको समझ सकते हैं कि हीट स्ट्रोक या हीट स्ट्रेस में है।
1: अच्छा, जैसे मान लो पशु चाहे जौन उम्र के हों चाहे वे लेरुआ हों, तो ये तरह

0: उनमें लक्षण दिखाई पड़े
1: जी
0: तो अपने
1: जी
0: सब समझ जाए।
1: जी
0: तो यह से अपने सब कैसे बचा जाए कि ये पशुओं का ये समस्या ना आवे पाए।
1: देखिए, इसका जैसे कि हम लोग को पता है कि ये गर्मी की वजह से हो रहा
0: जी
1: है, तो गर्मी से हमें पहले तो इसको गर्मी से बचाना है। अगर आपके पशुओं को लू लग गया है, हीट स्ट्रोक हो गया है, तो उन्हें सबसे पहले हमें इसमें देखिए टेम्परेचर जो बॉडी का हो जाता है वो 105 106 डिग्री चला जाता है,
0: अच्छा
1: जिसको हमें सबसे पहले टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। इसके लिए हमें अपने पशु को
0: जी
1: कम से कम 20 से 30 मिनट, करीब करीब आधा घंटा हमें लगातार नहलाना चाहिए,
0: अच्छा
1: और ये पानी हम उसके सर के पीछे वाले हिस्से पर डालें, जिससे कि उसका टेम्परेचर, क्योंकि सर के पीछे थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है, उसकी वजह से 1-2 पॉइंट टेम्परेचर कम होता है।
0: अच्छा
1: फिर इसके बाद इसके हम काम है एंटीबायोटिक दवाओं से भी इसका इलाज कर सकते हैं।
0: मतलब डॉक्टर साहब के पास भी अपने पशुओं का ले जाएगा।
1: जी, इसको आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय ले जाएं और उनका इलाज करवाएं।
0: डॉक्टर साहब अपने पशुओं को लू लगने ना पाए इसके लिए पहले से क्या हम लोग व्यवस्था करें कि जैसे पशु उससे बचे रहें।
1: देखिए, हमारे इस लू में को बचाने के लिए हमें जो हमारा शेड है उस पे ध्यान देना पड़ेगा कि ज्यादा गर्मी ना होने पाए। जैसे कई पशुपालक भाई हैं जिनका टीन का शेड है, तो
0: अच्छा
1: उसके ऊपर वो पुआल का एक लेयर डाल दें, जिससे कि डायरेक्ट सन की काम किरणें न पहुंचे और वो वातावरण थोड़ा ठंडा रहे। और इसी के साथ साथ कूलर का उपयोग भी कर सकते हैं, पंखे का उपयोग भी कर सकते हैं हम लोग। और इसके बाद हमें उनको दिन में कम से कम एक बार तो गायों को और भैंसों को काम है 1 से 2 बार भी नहलाना चाहिए,
0: अच्छा
1: और पीने के लिए साफ जल इनको काम है 3 से 4 बार साफ पानी पिलाएं। और पानी अगर हमारे किसान भाई कहीं एकत्रित करके रख रहे हों तो ताजा जल पिलाएं नल से, वो इनके लिए काफी लाभदायक होगा।
0: अच्छा तो मतलब ये तो आप बताएं इनकी जैसे लक्षण दिखाई पड़े तो अपने सब पशुओं को इस तरह से देख कैसे कितनी
1: जी
0: शुद्ध पानी पिए। और भी जैसे मान लीजिए पशु वहाँ है वह कितनी संख्या में है, उनके जो आवास है
1: जी
0: वह के कैसे प्रबंधन कर ली जाए कि जो से कि पशु आराम से रह सके और ये लू वाली समस्या उनके ना हो।
1: जी देखिए, अगर पशु ज्यादा है, किसी
0: जी
1: के पास संख्या ज्यादा है, तो वो फॉगर आते हैं, फॉगर लगाकर वो कम है फवारा बोलते हैं उसको, फवारा लगा सकते हैं अपने डेयरी शेड में, जिससे कि वो बहुत ही महीन उसमें पानी का भाव करते हैं, जिससे कि पूरा वातावरण ठंडा रहता है और पशु हमारे स्ट्रेस फ्री रहते हैं। अगर हमारे पशु स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो उनका दूध की जो देने की क्षमता है वो घटेगी नहीं अपितु तो बढ़ेगी ही, इसलिए हमें फॉगर का उपयोग भी करना चाहिए।
0: और पहले से का प्रबंधन की जाए पेयजल से या स्नान से संबंधित, या अपने पशुओं का अगर लू लाग गए हैं तो
1: जी
0: प्राथमिक उपचार के तौर पे अपने सभी का सावधानी बरती कि जोने से कि अपने पशु स्वस्थ रहें।
1: अगर हमारे पशुओं को लू लग गया है तो उनका लक्षण के हिसाब से हमें पहले उनका इलाज कर, जैसे अगर वो ज्यादा कम गर्मी महसूस कर रहे हैं तो उनको ठंडी जगह पर पहले उनको बांधें, फिर उसके बाद उनके टेम्परेचर को कम करने के लिए उनको आधे घंटे तक पानी से नहलाएं, फिर उसके बाद अगर हम लोग उन्हें नमक और चीनी का घोल पिलाएं, जिससे कि उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गया है उसमें क्या नाम है सुधार हो, जैसे कि ये नमक और चीनी हम लोग भी मनुष्य भी इसको इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार हम लोग पशुओं पे भी इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉल पाउडर ORS भी इनके लिए आते हैं मार्केट में, उसका भी उपयोग किया जा सकता है हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए। अगर हमारे पशुपालक भाई कर सकें तो तरबूज, जो इस समय का हमें काफी मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध है, उसको भी उसका भी काम है इन्हें सेवन करा सकते हैं। इसको नॉर्मल पानी में डालकर टेम्परेचर बराबर करके इसको फिर फोड़ के हम अपने पशु, क्योंकि पानी की मात्रा खूब होती है, पशुओं के शरीर पर भी काफी अच्छा प्रभाव डालता है। एक और हमारे पशुपालक भाई काम कर सकते हैं कि इस मौसम में हमारी जो पशुएं हैं वो खाती कम है, इनको या खाएंगी तो पाचन में इनको बहुत ही ज्यादा ताकत लगती है, जिससे कि क्या है हीट इनके बॉडी के अंदर भी काफी मात्रा में उपलब्ध होती है। इसलिए इनको क्या करें कि जो भूसा हम देते हैं उसको हम भिगो कर पानी में छान कर फिर निकाल कर कुछ देर

0: रख दें जिससे कि उसमें नरमी आ जाए भूसे में,
1: गर्मी निकल,
0: हाँ गर्मी भी निकल जाए और साथ ही साथ उसकी मिट्टी जो होती है 90% मिट्टी भूसे से निकल जाती है
1: जी।
0: और फिर इनको हम खिलाएं तो इनके लिए ये सुपाच्य भी होगा और चाव से खाते भी हैं।
1: तो जैसे ये तो हो गए कि मतलब चारा के प्रबंधन और चारा में काऊ पशुन का दिन जाए कि जो से यह मौसम मा स्वस्थ रह सके।
0: देखिए इस मौसम में हमारे पशुपालक भाइयों के पास चरी उपलब्ध होता है
1: जी।
0: और एक घास है नेपियर घास, नेपियर घास भी अगर वो लगाए हूँ पशुपालक भाई तो उसको भी दें। नेपियर घास की एक खासियत यह है कि एक बार लगाने पर ये 7 से 8 साल तक चलती है।
1: अच्छा।
0: और एक साल में ही 7 से 8 कटिंग हमारे पशुपालक भाई कर सकते हैं जो कि हरे चारे के संबंध में एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि हरा चारा पूरे वर्ष उन्हें उपलब्ध किया जा सकता है। और इस नेपियर घास में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए ये पशुओं के लिए बहुत ही लाभदायक है।
1: तो हरा चारा से संबंधित हो ये जानकारी, जैसे अपने पशुओं का लूट से प्रभावित हैं तो प्राथमिक उपचार के तौर पे सबसे पहले हम सब का उनका उपाय करी कि जोने से कि उनका बचावा जा सके
0: जी। सबसे पहले उनका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर उनका 105-106 डिग्री चला जाता है तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए पहले उनके टेम्परेचर को हमें कम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें उनके शरीर पर पानी डालना पड़ेगा लगातार 20 से 25 मिनट आधे घंटे तक, जिससे कि उनका टेम्परेचर कम होगा। और उसके बाद तुरंत उन्हें चीनी और नमक का घोल बनाकर उन्हें पिलाएं जिससे कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो चुका है उसको हम कम कर सकें।
1: तो जैसे ये बताएं चीनी नमक का घोल
0: जी,
1: तो पशुओं का कौन मात्रा में पिलाया जाए, जैसे पशु का कितनी बार दिया जाए, मान लिया लू लग गए हैं तो कितनी बार दिया जाए और उनका चारा फिर कैसे दिया जाए खाने के लिए।
0: अगर लू लग गया है तो इनको नमक हम 1 चम्मच कम है 1 लीटर पानी में घोल कर और 1 किलो चीनी का घोल बनाकर हम उसको रख लेते हैं। फिर उसे जिस भी बाल्टी से या टब से हम पानी पिलाते हैं उसमें उसको मिलाकर हम अपने पशुओं को दिन में 3 बार
1: लगभग
0: 3 बार उसको पिलाएं। और इस काम को हम लोग इस मौसम में लू लगने से बचाव के रूप में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गुड़ का पानी हुआ, गुड़ का राब हम बना के रख लिए, उसको क्या हमें 15 लीटर पानी में 1 लीटर गुड़ का राब मिलाकर अपने पशुओं को पिला दिया
1: तो लू से बचाव के लिए पहले से ये
0: पहले से भी इसको
1: उपचार
0: कर सकते।
1: अच्छा, जैसे मान लिया कोई गर्भवती पशु है
0: जी,
1: तो उनके देखभाल के ताई अपने सबका काव जो है विशेष ध्यान देकर चाहिए।
0: देखिए उन पशुओं को चराने ले जाते हैं तो उनको ना ले जाएं क्योंकि इस मौसम में उन्हें दिक्कत हो सकती है, उनको अगर चराना ही है, अगर उनको निकालना है तो किसी बाग में उनको चरा सकते हैं या फिर 12 से 3 बजे का समय है इसमें हम अपने पशुओं को बाहर ना ले जाएं। और ठंडी जगह पर इनको बैठाएं जिससे कि कम से कम स्ट्रेस में ये आए। देखिए जब हमारे पशु स्ट्रेस में आते हैं तो इनमें और भी कई प्रकार की बीमारियां हीट स्ट्रोक के अलावा भी उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए उन सब चीजों से, क्योंकि हमारी गाय उस समय गर्भवती है तो उस पे क्या हमें बुरा असर पड़ता है, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए हमें इसका खास ध्यान रखना।
1: पशुओं का भाई खड़ी दोपहरिया में बिल्कुल ना ले जाए चरावे के
0: जी, बिल्कुल
1: एक विशेष ध्यान रखें और सवेरे संझा भाई टहरा सकत है और चराए सकत है। तो ये तो हो गई भाई देखा लू से बचाव डॉक्टर साहब जानकारी अपने सभी दिन। अब ये बतावे कि और कुछ विशेष जे पशु भाई पाले है पंच भैया लोगे तो कुछ विशेष अगर जानकारी हो तो अपने पंचन का बतावा चले।
0: देखिए इस मौसम में हम उन्हें जितना भी एनर्जी वाला काम है, ऊर्जा देने वाला राशन हो
1: वही
0: पौष्टिक, जैसे कि ज्यादातर हमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, जैसे कुछ दलहनी जो राशन है उनके राशन में जोड़ा जाए जिससे कि उनको एनर्जी मिले
1: जी।
0: और एक हमें मल्टी विटामिन का भी उन्हें समय समय पर उन्हें देना चाहिए क्योंकि मल्टी विटामिन की वजह से वो स्ट्रेस में नहीं आने के पाएंगे, उनके अंदर ताकत बनी रहेगी। और इसी के साथ साथ हमारे पशुपालक भाई, देखिए पशुपालन करते हैं वो दुग्ध उत्पादन के लिए, उसके साथ साथ उन्हें गोबर और गौमूत्र भी मिलता है, तो हम कैसे इस गोबर और गौमूत्र का भी प्रयोग कर लें कि हमारा इससे भी लाभ हो। जैसे कि हम लोग गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे लेकिन अब उसे हम गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं
1: जी।
0: गौमूत्र का

0: उपयोग कर हम प्राकृतिक खेती भी कर सकते हैं। तो हमारे पशुपालक भाई दूध ही नहीं साथ साथ गोबर और गौमूत्र का भी उपयोग करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।
1: तो भैया देखा, आप अपने स्टूडियो में डॉक्टर अभिषेक मिश्रा पशुपालन वैज्ञानिक देवकाली अयोध्या से आए रहे और इतनी बढ़िया जानकारी दी। अपने पशुओं का लू से कैसे बचाव हो जाए, यह जानकारी बदे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंच भैया देखो, गर्मी और लू ये शायद के तो मौसम का यह दशा है, और अपने पशुओं का भी बचावे का है और अपने सबका भी बचावे का है। तो जो जानकारी वहीं सुने, लू और गर्मी ने पालतू पशुओं की देखभाल और प्रबंधन पे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा भैया काफ़ी अच्छे से समझाए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी उनकी बताई गई बात का ध्यान में रखी हैं। जोन भी आपके पशु हैं, चाहे वो दुधारू गाय भैंस हैं या भेड़ बकरी हैं, तो उनके अच्छे से देखभाल करी हैं और उनसे जो लाभ है वो उठावत रही हैं। आगे पंचायती माँ भी आपसे बातचीत करवाए, लोकगीत भी सुनोगे बोल थोड़े अंतराल के बाद।
3: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
4: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
3: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
4: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
5: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
5: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
8: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
7: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
8: और व्हाट्सएप नंबर 8303991111 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
9: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
10: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
2: पंच भैया, हम आप सबसे एक बात और कहा चाहते थे कि मौसम तो ठीक है, गर्मी कहे आगे बरखा आवे वाली है, मूल पर्यावरण का ध्यान में रख के अब अपने सबका चाहिए कि धरती पर हरियाली बढ़ावे के उपाय करे के। एक लिए ज्यादा से ज्यादा अपने सभी पेड़ पौधा जोन बाय वो लगावा जाए। अब महीने से तैयारी की जाए तो आगे जब बरखा हो जाए तो पेड़ लगावे में आसानी हुए। गड्ढा के जोन तैयारी बाय वो का कई लीन जाए, गड्ढा के भराई कई दिन जाए, और जब माटी बैठिए बढ़िया से पानी बरसे के बाद तो है गड्ढा माँ हमें सभी जो उन पेड़ हैं उनका लगा हुआ है तो अच्छे से उनके बाढ़ विकास हुए। काहे से भैया, जब तैयारी से पूरी लगावा जाते पेड़ पौधा तब वो पेड़ पौधा पनपत है, आगे बढ़त है, और धरती के सिंगार पेड़ पौधा ये हैं, फल फूल हैं, तो इनका बनाए रखे कब आए जैसे इनकी अपनी लोकगीत माँ छवि लाल पाल और साथी भैया सुनाए रहा है, चलो सुनी।

बिल्कुल भैया, हमें पेड़ लगावे का है, ज्यादा से ज्यादा धरती का हरियर बनावे का है, ताकि हमें हवा जोन बाय जीवनदायी ऑक्सीजन मिलत रहा है और फल फूल तो मिलबे करी है। मूल अब समय है पंचायती में बाजार भाव और मौसम के जानकारी दबावे के। तो जोन बाजार भाव मिला है कुल मिला के भैया यह तरह से है, चावल कामन 3050 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूं

अभी युवा साथी सुन रहे थे, माफ कीजिएगा, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.9 MHz पर। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आज के शेष कार्यक्रमों में रात्रि 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन। आपकी बात कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 9:15 से। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या सुनिएगा रात्रि 9:30 से। हमारे कल के कार्यक्रमों के बारे में भी संक्षिप्त रूपरेखा आपको बताते चलते हैं। कल के कार्यक्रमों में प्रातः 7:30 से होगा भक्ति संगीत कार्यक्रम अमृत कलश। प्रातः 8:15 से सुर संगम सुनिएगा। प्रणाम अयोध्या का समय होगा प्रातः 8:30 से। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा गृहवाटिका, मनोरंजन, व्यायाम भी। इसके अलावा श्री अनुराग वर्मा की वार्ता भी आप सुनेंगे। विषय होगा कालिदास के काव्यों में प्रकृति वर्णन। आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम होगा प्रातः 9:00 से। हेलो अयोध्या आप सुन सकेंगे प्रातः 9:30 से। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा प्रातः 10:00 से। फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग सुनेंगे आप दिन में 12:30 से। कुछ तुमने कहा कार्यक्रम होगा दिन में 1:00 से। फेसबुक श्रोताओं के साथ ये कार्यक्रम होता है। गीतांजलि कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:00 से। नारी जगत कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 2:30 से। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा हमारा हुनर हमारी पहचान और सही पोषण है जरूरी। मीना श्रीवास्तव पूर्व प्रोफेसर से की गई भेंटवार्ता भी आप सुन सकेंगे। विषय होगा शाकाहारी आहार की शक्ति। युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:00 से। कार्यक्रम में चर्चा होगी मिशन लाइफ विषय पर। भारतीय इतिहास में आप जानेंगे माणिक्य राजवंश त्रिपुरा के बारे में। साथ ही हमारा आकर्षण होगा चक्र।

व्यू लोक संगीत कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 से, शाम सुहानी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:10 से, गुजर स्वरगांव के कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 से, किसानवाड़ी कार्यक्रम होगा शाम 6:45 से। कार्यक्रम में चर्चा होगी गर्मी में पशुओं की देखभाल विषय पर। इसके अलावा ई राजमणी पूर्व सहायक अध्यापक आचार्य नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से आलोक कुमार गुप्ता की बातचीत भी आप सुनेंगे। विषय होगा जून माह के कृषि कार्य। कार्यक्रम विवरण होगा शाम 7:15 से। गीत गुंजन सुनिएगा रात्रि 8:15 से। महफिल गजल होगा रात्रि 9:15 से। और हेलो अयोध्या आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 से। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारी आज की सभा के शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: बोल बोल के थक गया,
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
6: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित, कहा प्रदेश में नकलविहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र, कहा सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित, 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। इनमें प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1,00,000 रूपये टैबलेट प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। वहीं जनपद स्तर पर टॉप 10 में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रूपये प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
8: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए हैं। अटल टिकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के

0: लिए आवश्यक है और उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: मुख्यमंत्री ने आज बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
2: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा, आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास, यही परिवर्तन लाएगा, हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
1: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीते दिनों आंधी बारिश के चलते जनपद में हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। 31 मई 2025 से कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्यरत राजीव कृष्ण को कल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के तौर पर नियुक्ति दी गई है, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्यौहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त किया जाए, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है, और ये बुढ़ापे में जो

0: 3,000 रुपए भी इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। इसके अलावा भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में फेरबदल कर

0: सरकार ने शिक्षा विभाग में फेरबदल करते हुए प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया है। वहीं प्रभारी निदेशक वैकल्पिक व साक्षरता शिक्षा उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। शासन के विशेष सचिव के गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से 7 जून तक गौशालाओं में विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं डेयरी गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही प्रदेश की सभी गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गोसंवर्धन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पशुधन मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत राज्य सरकार मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत 4 निराश्रित गोवंश लेने वाले किसानों और पशुपालकों को 72,000 रूपये की सहायता भी प्रदान करेगी। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। हमीरपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जौनपुर में भी तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: Hey girls, hi, congratulations. आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं कर्ज फिल्म का ये गीत। स्वर है किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों के। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज इस कार्यक्रम में आकाशवाणी से जुड़ी बेहद दिलचस्प स्मृतियां साझा करेंगी आकाशवाणी परिवार की सेवानिवृत्त सहायक केंद्र निदेशक अनीता वेस्ली पटेल। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में। अनीता जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, मुझे हार्दिक खुशी हो रही है वापस अपने घर में आके।
0: क्या बात है,
1: सब अपने ऐसा लग रहा है अपने अपनी दीवारें, एक अपनापन, क्योंकि इन स्टूडियोज में हम काम करते थे, हम कलाकारों को बुलाते थे, रिकॉर्ड करते थे, और आज हम उसी रोल में बैठे हैं। हमेशा तो माइक के पीछे ही काम करने में आनंद आता था, अच्छे से अच्छे लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाना, और उनसे हमारे जो अनाउंसर्स होते हैं बहुत ज्यादा काबिल होते हैं, किस तरह से बात निकलवानी है ये वो जानते हैं।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: तो उनको वो काम करने दिया जाता था और हम अपना ढूंढने में लगे रहते थे, बस खोजी दस्ता।
0: तो आज हम, जो आपने कहा ना कि उद्घोषक बात निकलवाना जानते हैं, तो आज हम भी आपसे बहुत सारी बातें निकलवाएंगे।
1: अच्छा, अच्छा,
0: और आपकी बहुत सारी यादों को हम खंगालेंगे और आपको बहुत सारी यादें साझा करनी होंगी। तो चलिए फिर यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि विविध भारती के स्टूडियो में अनीता जी के सानिध्य में हमें भी काम करने का मौका मिला और सेहतनामा कार्यक्रम, आज के मेहमान जैसे कार्यक्रम को उन्होंने रिकॉर्ड किया और भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग इन्होंने की जिसमें आर्टिस्ट को आमंत्रित करती थी और हम सब इंटरव्यूज किया करते थे। लेकिन अनीता जी, हम मुंबई की बातें बाद में करेंगे, पहले हम आपको उत्तर प्रदेश की गलियों में ले चलते हैं, रामपुर आकाशवाणी, जहां आपका सिलेक्शन हुआ था। कीजिए
1: तो पहली पोस्टिंग रामपुर उत्तर प्रदेश में हुई। तो यूपीएससी में मैंने इंटरव्यू दिया था
0: जी।
1: आया लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, और रामपुर का नाम पढ़ते ही सब लोग थोड़े से ये कहने लगे कि नहीं जाने दूंगा मेरे पिताजी, क्योंकि वहाँ तो सब चाकूबाजी और ये सब का सुनते, खबरें सुनते थे ना कि लड़की को कैसे जाने दे, अनमैरिड लड़की को उठा के अकेले वहाँ रहने के लिए। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है, जिद करी मैंने। उसके लिए मैंने अपनी सहेली से पैसे भी ले आई।
0: अच्छा।
1: हाँ, कि जाना है तो नहीं। फिर मेरे पिताजी मुझे लेके गए अच्छी तरह से। हाँ, मेरी मम्मी की एक फ्रेंड का घर भी था वहाँ, तो गए वहाँ, ज्वाइन किया। फिर स्टेशन में गए तो इतना प्यार मिला, क्योंकि छोटे से एकदम कॉलेज से निकल के हम वहाँ गए थे, और म्यूजिक की हूँ मैं तो म्यूजिशियंस तो इतना प्यार देते हैं, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह
0: जी।
1: हमारे तो इतना अच्छा माहौल मुझे मिला रामपुर में, बिल्कुल फैमिली की तरह। तीन विंग्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग एंड प्रोग्राम
0: जी।
1: तो वहाँ कुछ पता ही नहीं चलता था, जब गर्मी का मौसम है या अमरूदों का मौसम है तो बाहर से ठेला जा रहा है तो बुला लिया, सब बैठ के अमरूद भी खाते थे, मूंगफलियां, हम कॉलोनी में घुसते थे तो सब कुर्सियां डाल के बैठे हैं, मूंगफलियां लेके सब बैठे हैं, खा रहे हैं। अपना घर पहुंचते पहुंचते आधा पौना घंटा लग जाता था। तो बड़ा अच्छा माहौल हमने देखा, रामपुर की गंगा जमनी तहजीब देखी, कहीं कुछ डर नहीं लगा, और सब एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे, सब जानते थे एक दूसरे को। तो एक बार बाजार में सामान लेने गए तो बोल रहा है हाँ हाँ आप बस ऑर्डर दे दीजिए, घर पहुंच जाएगा। मैंने कहा मैंने तो आपको बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। कहते हम सब जानते हैं, रामपुर में सबको सबका पता है। तो इतना अच्छा, और वहाँ इतनी अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, खूब साड़ियाँ, मैंने सब रिश्तेदारों को पैच वर्क की साड़ियाँ पहनाई, सब खुश मुझसे।
0: पहली तनख्वाह मिली थी उससे?
1: हाँ।
0: फिर माँ के हाथ में क्या रखा था?
1: माँ के हाथ में तो साड़ी रखी थी कि भाई ये लो मेरी पैच वर्क की साड़ी।
0: बड़ा जज्बाती लम्हा रहा होगा।
1: हाँ, अरे और मेरे पिताजी तो इतना मुझे केयर करते थे, और वो रामपुर से हमेशा

0: शाह पास होते थे दिल्ली से, उनका लखनऊ हेडक्वार्टर था, तो आते जाते मेरे लिए कभी बालूशाही कभी कुछ।
1: अच्छा अनीता जी, आपने अभी जिक्र किया संगीत से आप आकाशवाणी में आपका प्रवेश हुआ, तो वो संगीत के बारे में बताइए, क्या शास्त्रीय संगीत आपने सीखा है और क्या क्या तालीम ली अपने
0: संगीत
1: के बारे में?
0: तो मेरी डायरेक्शन ऑफ लाइफ जो है वो संगीत ने ही दी है मुझे, यहाँ तक कि मैं पहले 10th पास करी जब, तो स्ट्रीम चुनते हैं तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, उन्होंने बोला कि तुमने साइंस क्यों नहीं ली, मैंने बोला उसमें संगीत नहीं है।
1: ओहो क्या बात है,
0: इसलिए मैंने वो साइंस नहीं ली, बाकी मैं बहुत काबिल थी तो बन सकती थी। और उसके बाद बीए म्यूजिक किया मैंने
1: जी,
0: और अपनी लाइफ को जो मैं डेडिकेट करती हूँ ना, जो सही रास्ते पे लाया वो मेरे गुरुजी, जिनको मैं प्रणाम करती हूँ, पंडित तेजपाल सिंह, सिंह बंधु वाले
1: जी,
0: उनसे मैंने गाना सीखा और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने एमफिल म्यूजिक किया।
1: क्या बात है।
0: और जबलपुर यूनिवर्सिटी से बीएड किया और प्रयागराज यूनिवर्सिटी से कथक में डिप्लोमा किया, ये सब क्योंकि हमारे पिताजी बड़े हमें गाइड करते थे
1: जी।
0: तो गाने में तो खाना और गाना साथ चलता है, और खूब खाती थी मैं मोटी तगड़ी थी बिल्कुल, फूली कभी नहीं हूँ मैं।
1: हाँ।
0: स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था मगर बॉडी बिल्डर वाला स्ट्रक्चर था मेरा, तो बहुत ही अच्छे से रहती थी। तो रामपुर में भी कई बार लोग कहते थे कि मैडम आपसे हमें बहुत डर लगता है क्योंकि वहाँ की लड़कियां बिल्कुल पर्दा नशीन और एयर वो, हम यहाँ धाकड़ अपने चले जा रहे हैं, पर्सनैलिटी हमारी। तो बहुत इंजॉय किया रामपुर का। रामपुर में जब हिंदुओं के त्योहार आते थे तो झूले पड़े हुए हैं, कॉलोनी में भी झूले डलते थे, हमने वो इंजॉय किया जो हमें दिल्ली में नहीं मिल पाता था क्योंकि दिल्ली शहर है। और उसी तरह से होली आई तो हर एक के घर के आगे एक बड़ी सी टेबल में पकवान रखे रहते थे और सब सामूहिक रूप से कॉलोनी में होली खेलते थे।
1: क्या बात है।
0: अरे बहुत ही, मतलब असली में त्योहारों का जो मजा है ना वो इन छोटी जगहों में जाके ही जो आपको प्यार मिलता है ना, ईद हो सब जाते थे, मुबारकबाद दिवाली में,
1: क्रिसमस
0: किया सजाया सजावट होती थी, क्रिसमस पे हमारे दयाल साहब थे सब उनके घर पहुंच जाते थे।
1: दयाल साहब आकाशवाणी में,
0: मैं अनाउंसर थे सीनियर।
1: अच्छा, जी।
0: तो हमारे किसी के भी घर में कुछ बढ़िया बनता था ना, तो मैं तो मासूम बिचारी अकेली रहती हूँ ना।
1: अभी तो आप बता रही थी कि आपको देख के लोग डरते थे, अभी कह रही मासूम तो
0: ये। क्योंकि मुझे जो बड़े बड़े जो मेरे हमारे जो ऑफिसर्स थे ना,
1: मासूमियत होती है
0: वो, आप नहीं वो बुलाते थे बच्चे की तरह कि भाई जाओ उसको बुला लो वो खा लेगी, अभी बन रहे हैं दही बड़े या छोले भटूरे का ही बन रहे हैं। तो जिस भी घर में कुछ अच्छा बनता था तो पहले अनीता वैसली थी तब मैं, तो मुझे बुला लिया जाता था। तो मेरी तो मतलब क्या जिंदगी थी, वो नौकरी एक तो संगीत की नौकरी थी, शेड्यूलिंग करती थी, शेड्यूलिंग करती थी तो लोग बड़े खुश होते थे, सुनते थे। क्या है बड़े बड़े इन जगहों में पान की दुकानों में जोर जोर से बजाते हैं गाने, तो हमारे शेड्यूल हुई हुई गजलें या सबरंग जब बजरा होता था वहां हमसे हम निकलते थे तो हमें भी बड़ी खुशी होती थी और लोगों को भी कोई नया आके शेड्यूलिंग कर रहा है, क्योंकि मैं तो लाइब्रेरी में ही बैठी रहती थी, मुझे इतना शौक था कि अच्छे से अच्छा करूं, तो लोग कॉम्प्लीमेंट करने आते थे, पुराने पुराने जो सुनने वाले अप्रिशिएट करते थे कि वाह ये वाले गजलें हमने पहले कब से सुनी नहीं थी, तो एक मन को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता था।
1: अब जब बात गानों की चल जाए और एक इतनी बड़ी गायिका हमारे सामने बैठी हो तो उनसे हम गवाए नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो अनीता जी कुछ लाइन गुनगुना के सुनाइए, उन दिनों की याद करते हुए या आज कुछ गुनगुनाती हैं।
0: वैसे तो यूपीएससी के लिए जो इंटरव्यू दिया था वहां पर भी हमें गा के बताना पड़ा था, ये उनके लिए भी एक अच्छा तरीका था टेस्ट करने का कि जिसको हम संगीत की जिम्मेदारी
1: के लिए हम नियुक्त कर रहे हैं
0: वो किसी काबिल है कि नहीं।
1: हाँ, तो ठीक है वही सुना तो दीजिए जो।
0: हालांकि मेरे 34-35 साल से तो मैं काम में ही लगी रही हूँ
1: जी,
0: फिर भी थोड़ी कोशिश करती
1: हूँ जी। जी सुनाइए।

0: इतने सुर में, क्या बात है,
1: तो ये
0: बहुत बढ़िया बंदिश आपने सुनाई। और कहीं भी सुर बिल्कुल सधा हुआ है? आपने तो कहा 34 साल पहले गाती थी,
1: 34-35
0: काम में बिजी हो गए, हमें तो लगता
1: है गला चेंज हो गया है बिल्कुल।
0: आप इस हुनर को अभी और आगे बढ़ाएं, हमारी तो शुभकामनाएं हैं आपके लिए, और हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि आप इसे आगे बढ़ाइए फिर से। और अभी आपके पास वक्त भी है रियाज का।
1: हाँ, ये तो बहुत अच्छा सजेशन है, सोचती हूँ मैं, क्योंकि अब फ्री हो गई हूँ
0: जी। क्योंकि जब आकाशवाणी में जब आप कार्य कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जहाँ आपके निजी शौक पड़े रह जाते हैं, जिन पर हम गौर नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए वक्त है और आप तो फिर से शुरू कीजिए। विविध भारती परिवार की ओर से हम आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अनीता जी, अब हम आपके आकाशवाणी के सफर पर चलते हैं। आकाशवाणी रामपुर से फिर आप किस आकाशवाणी केंद्र पर गई? 5 आकाशवाणी केंद्रों पर आपने काम किया।
1: हाँ, वो भी अलग अलग स्टेट्स में
0: जी। तो रामपुर से कहाँ गई?
1: रामपुर से मैं दिल्ली गई। हालांकि रामपुर बहुत प्यारा था, मगर दिल्ली अपना घर था, पेरेंट्स थे, तो वहीं जाना था, तो वहाँ के लिए ट्रांसफर हो गया। दिल्ली में मैंने दिल्ली स्टेशन पे काम किया, संगीत देखा, उसके बाद फिर
0: संगीत विभाग में
1: मैंने देखा नेशनल प्रोग्राम्स एंड संडे नाइट कंसर्ट्स। उसके लिए जो भी आर्टिस्ट सेलेक्ट होते हैं, रिकॉर्डिंग्स आती हैं, उसको बजवाना, वो हमारी जिम्मेदारी थी। उसके बाद फिर मैं वहीं पे इंटरनल ट्रांसफर होते रहते हैं, तो वहां गई मैं डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज यूनिट, जिसे DTPES कहते हैं
0: जी।
1: तो उसमें पूरे देश भर में इधर से उधर प्रोग्राम्स का एक्सचेंज किया जाता है सैटेलाइट के थ्रू, रोज सैटेलाइट फीड जाता है। नहीं, सभी तरह के कार्यक्रम
0: जी।
1: तो DTPES में वो काम होता है, और सैटेलाइट के लिए शेड्यूल करके दिया जाता है, और बाय पोस्ट भी भेजा जाता है, और उसके अंदर फॉरेन के जो प्रोग्राम होते हैं, डॉशे वेले जर्मनी से जो आते थे
0: जी,
1: और वॉइस ऑफ अमेरिका, तो इन सब के प्रोग्राम्स को हमारे DTPES में एक बड़ी फैसिलिटी थी हाई स्पीड डबिंग की। तो वहां पे उनके बहुत सारी कॉपियां तैयार की जाती थी और उनको डिस्पैच कराया जाता था
0: जी जी जी।
1: संगीत देखा, उसके बाद फिर
0: संगीत विभाग में
1: मैंने देखा नेशनल प्रोग्राम्स एंड संडे नाइट कंसर्ट्स। उसके लिए जो भी आर्टिस्ट सेलेक्ट होते हैं, रिकॉर्डिंग्स आती हैं, उसको बजवाना, वो हमारी जिम्मेदारी थी। उसके बाद फिर मैं वहीं पे इंटरनल ट्रांसफर्स होते रहते हैं, तो वहां गई मैं डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज यूनिट, जिसे DTPES कहते हैं
0: जी।
1: तो उसमें पूरे देश भर में इधर से उधर प्रोग्राम्स का एक्सचेंज किया जाता है सैटेलाइट के थ्रू, रोज सैटेलाइट फीड जाता है सभी तरह के कार्यक्रम
0: जी।
1: तो DTPES में वो काम होता है, और सैटेलाइट के लिए शेड्यूल करके दिया जाता है, और बाय पोस्ट भी भेजा जाता है, और उसके अंदर फॉरेन के जो प्रोग्राम होते हैं, डॉशे वेले जर्मनी से जो आते थे
0: जी,
1: और वॉइस ऑफ अमेरिका, तो इन सब के प्रोग्राम्स को हमारे DTPES में एक बड़ी फैसिलिटी थी हाई स्पीड डबिंग की। तो वहां पे उनके बहुत सारी कॉपियां तैयार की जाती थी और उनको डिस्पैच कराया जाता था
0: जी जी जी।

इंटरव्यू। हवा महल में अभी आपने श्री वी एम आनंद का लिखा ये प्रहसन सुना। इसे प्रस्तुत कर रहे थे मुख्तार अहमद।

0: हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
2: गीत गुंजन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आशा भोसले के निधन के कुछ ही हफ्तों बाद भारतीय संगीत जगत को एक और बड़ा झटका लगा है। दिग्गज सिंगर सुमन कल्याणपुर, जिनकी मधुर आवाज ने कई पीढ़ियों के लोगों को मंत्रमुग्ध किया, उनका भी कल यानी रविवार 31 मई को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक बड़ी क्षति हुई है इसकी वजह से भारतीय सिनेमा को भी, संगीत जगत को भी। तो कार्यक्रम में कुछ गाने आज सुमन कल्याणपुर की आवाज में। पहला गीत आपको इन्हीं की आवाज में सुना रहे हैं। साथी का गायक हैं कमलेश अवस्थी और अनवर। फिल्म का नाम है नसीब, गीत है आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM 101.9 MHz पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई

0: Hello.
1: Hello. Suno. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
4: श्रोताओं, सुमन की आवाज सुरीली सिंगर लता मंगेशकर से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। अक्सर लोग दोनों की आवाज को लेकर भ्रमित हो जाया करते थे। संगीत की दुनिया में दशकों तक अपनी एक अलग पहचान इन्होंने बनाई। 28 जनवरी 1937 को अविभाजित भारत के ढाका में जन्मी सुमन कल्याणपुर हिंदी और मराठी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध सिंगर्स में से एक बनी। फिल्मी गीत के अलावा इन्होंने भजन, गजल और कई सारे गीत गाए जो एक कलाकार के रूप में उनकी पहचान को बनाते हैं। कार्यक्रम में एक और गाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ब्रह्मचारी फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
5: श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के संबंध में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हमारे बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, उत्साह और जोश का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। ऐसा बच्चा जो भारतीय नागरिक हो तथा भारत का निवासी हो, वह इसमें प्रतिभाग कर सकता है। इसकी आयु सीमा है 31 जुलाई 2026 को। प्रतिभागी बच्चे की उम्र 5 वर्ष से कम तथा 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चे का कार्य, घटना और उपलब्धि नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 2 वर्ष के भीतर की होनी चाहिए। विजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति या संस्था असाधारण उपलब्धियों वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। बच्चे स्व नामांकन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कारों की घोषणा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। ये पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आप वेबसाइट awards.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम में एक और गाना आपको सुनवा रहे हैं, जब जब फूल खिले फिल्म से मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
1: श्रोताओं, मुंबई के सेंट कोलंबस स्कूल से सुमन कल्याणपुर ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद सुमन ने चित्रकला की पढ़ाई की और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। इसके बाद जल्द ही संगीत में उनका जुनून बन गया और उन्होंने पंडित केशव राव भोले, उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और उस्ताद नवरंग जैसे प्रख्यात गुरुओं से ट्रेनिंग ली और जिन्होंने उनके करियर की नींव रखी। एक अगला गीत सुमन कल्याणपुर के साथ मोहम्मद रफी की आवाज में राजकुमार फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।

कार्यक्रम में मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक और गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म साथी से मजरू सुल्तानपुरी के लिखे हुए गीत को संगीत दिया है नौशाद ने।

राकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में साथी फिल्म के इसी गाने के साथ कार्यक्रम गीत गुंजन से अब दीजिए अनुमति। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या और उसके ठीक बाद न्यूज़ एट 9 हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान के 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future।
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौता

समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में।

0: सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-2371-7117 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतन

0: double medalist Jaswinder Singh. In a bilingual live phone-in program, Public Speak, tonight at 9:30 p.m., we will bring a discussion on staying safe during heat waves, precautions, preparedness and protection with Mr. D.R. Patnaik, Senior Scientist, IMD, and Dr. Rupali Malik, Department of Medicine, Safdarjung Hospital. Listeners can ask questions on the subject on telephone numbers 23717117 and 23314444, prefixing the Delhi STD code. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U May Aung Lhyng hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी बात।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
6: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
5: अब ECHS से इम्पैनल्ड, आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
6: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
5: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
7: आपकी बात सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय धर द्विवेदी का
8: और नेहा तिवारी का
7: नमस्कार। नेहा जी,
8: जी
7: वैसे तो कई दिनों से पता चलता रहा कि नौतपा चल रहा है, लेकिन नौतपा में पहले 2 दिन तपने के बाद तपा जो है वो थोड़ा सूर्य गर्म हो गया,
8: हाँ, थोड़ा
7: और थोड़ा अच्छे से कट गया। अभी फिर गर्मी आज से शुरू हो रही है, जो अगले 2-3 दिन तक तीव्र गति से बढ़ेगी, जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है। तो एक गुजारिश हम लोगों की रहेगी अपने श्रोताओं से कि अपनी सुरक्षा सदैव पहले नंबर पर रखें।
8: बिल्कुल।
7: अब बातचीत करते हैं हम लोग कि किस किस के संदेश आकाशवाणी के नाम यहाँ आए हैं।
8: आज बहुत सारे संदेश आए हैं,
7: क्या बात है, तो हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है
8: जी। और पहला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है टिकरी नवाबगंज गोंडा से रुपेश मिश्रा का। आप लिखते हैं कि आकाशवाणी की पूरी टीम को नमस्कार।
7: नमस्कार पूरी टीम की तरफ से भी रुपेश जी को।
8: आगे लिखते हैं कि निवेदन है कि एक ही कलाकार के अंतर्गत कभी गोविंदा पर भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए।
7: जरूर नेहा, इसको नोट करिए, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है, हमारे अपने श्रोता की फरमाइश को पूरा करना हम लोगों का पहला कर्तव्य है, तो जरूर गोविंदा जी पर हम लोग कर सकते हैं कार्यक्रम।
8: और आगे लिखते हैं कि प्रणाम अयोध्या में अभिनेता धर्मेंद्र के मित्र से सदक जी की गई बातचीत इनको बहुत ही पसंद आई।
7: जी ये हम लोगों को भी पसंद आई थी, उनके एक फैन जैसे कि आप सब आकाशवाणी के फैन हैं, वैसे ही एक फैन उनके जो बराबर धर्मेंद्र जी का जब बर्थडे होता था जन्मदिन, तो जन्मोत्सव मनाने के लिए उनके पास जाया करते थे, तो वो किसी माध्यम से आकाशवाणी अयोध्या पर आ गए थे और आप सबके लिए उनका एक साक्षात्कार यहाँ करके रखा हुआ था, जो आप लोगों को सुनाया गया पिछले शनिवार को।
8: जी अगला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से। लिखने वाले हमारे श्रोता है विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, इनकी बेटी वाड़ी, बेटा आरव, इनकी माता जी चंद्रकला, पिताजी काशीनाथ, भाई गणेश, बहन सोनी आरोही और प्रियांशी।
7: क्या बात है, देखिए मस्किन भाई का बराबर ही संदेश आकाशवाणी अयोध्या में पहुंचता है
8: जी।
7: आगे क्या कहते हैं,

0: ही विस्तृत संदेश भी रहता है, एक एक कार्यक्रम के बारे में आप बहुत ही अच्छे से लिखकर भेजते हैं। लिखते हैं कि हम सभी परिवारजन नियमित रूप से आपके कार्यक्रम बड़े ही ध्यान और उत्साह के साथ सुनते हैं। आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों में अपनापन, ज्ञान, मनोरंजन और संस्कारों की सुंदर झलक देखने को मिलती है। यही कारण है कि हर कार्यक्रम दिल को छू जाता है और पूरे परिवार को एक साथ जोड़ देता है। कुछ तुमने कहा, कार्यक्रम में फिल्मी गीतों की फरमाइश और श्रोताओं के संदेश सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति इतनी मधुर और शानदार रहती है कि समय का पता ही नहीं चलता।
1: क्या बात।
0: हम भी अपने संदेश बड़े उत्साह से लिखकर भेजते हैं और जब नाम सुनाई देता है तो बहुत खुशी होती है।
1: और जब आपके खत, आपके संदेश आकाशवाणी में आते हैं तो हम लोगों को भी उतनी खुशी होती है। जी,
0: हमारी एक छोटी सी विनती है कि श्रोताओं के संदेशों को थोड़ा और समय दिया जाए ताकि दूर दूर से भेजे गए भावनात्मक संदेश भी अधिक सुनाए जा सके।
1: नेहा
0: जी,
1: पिछली दफे जब हम लोग बातचीत कर रहे थे कभी या आपस में बैठे, ये तय हुआ था कि सबके भावनात्मक संदेशों को अधिक समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि समय लिमिटेड है। कभी हम लोग मस्किन जी किसी की बातों को थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं, कभी किसी कर देते हैं। हमको जितना जोड़ना गांठना है वो एक सीमा तय है, उसी के बीच में और सबको संतुष्ट करना है।
0: अब डेली जितने भी मैसेज आते हैं वो हम सारे मैसेज शामिल करते हैं उनके नाम और पते के साथ।
1: जी जी।
0: साथ ही साथ एकाध संदेश, दो संदेश, तीन संदेश जो हमें अच्छे उसमें दिखाई पड़ गए वो हम उसको साथ में
1: फिर भी हम लोग स्किन जी की भावनाओं का कदर करते हैं और इनके कहे अनुरूप करने की कोशिश करेंगे।
0: जी, अंगना कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगा। यीशु दुबे की प्रस्तुति इनको बहुत सुंदर लगी। सरस्वती पाठक जी को और यीशु दुबे जी को बहुत धन्यवाद।
1: जी,
0: और किसानवाड़ी कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। सरजू और हरीश जी के साथ ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है।
1: क्या बात है।
0: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में आनंद गुप्ता जी द्वारा रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं पर जो जानकारी दी गई बहुत अच्छी लगी इन्हें। बाल जगत कार्यक्रम में भी इनको विश्व हाइपरटेंशन दिवस, फास्ट फूड से नुकसान, गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग,
1: इन सब बातों पर चर्चा हुई थी।
0: इनको बहुत ही अच्छा लगा ये सब।
1: यानी ये जो चीज लिख के भेजते हैं हम लोगों को लगता है कि लोगों ने बहुत ध्यान से, बहुत गौर से हमारे कार्यक्रमों को सुना गुना, तब अपनी बातें हम तक भेजते हैं। अगला संदेश किसका है?
0: जी, अगला जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास तक जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं डॉक्टर बनवारीलाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत और विक्रम जयपाल।
1: हाँ, डॉक्टर बनवारीलाल जी क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं?
0: लिखते हैं, अवधि गीत बहुत ही सुंदर और मन को छू लेने वाले होते हैं आपके यहाँ के।
1: बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब अवधि रामचरित मानस
0: जी
1: जो सर्वव्यापी है, सबको प्रिय है,
0: सबको प्रिय है,
1: वो भाषा होने के कारण
0: बिल्कुल वही मिठास है,
1: वही मिठास अवधि में। जी,
0: आपकी बात, जो कार्यक्रम है उसका समय बहुत कम है, कृपया इसको बढ़ाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये नोट किया जाता है।
0: अंगना कार्यक्रम में खसखस के फायदे इन्होंने सुने, उनको वार्ता बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी। आपके संदेश, आपके गीत, लोक सुरमाला भी बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हैं। कुछ तुमने कहा, अंगना, नारी जगत, ये सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे हैं और हम लगातार सुनते हैं और आपको कार्यक्रम सुनवाने के लिए धन्यवाद।
1: भाई बनवारी लाल जी, आप अपने इतने महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा सा समय आकाशवाणी अयोध्या के लिए आपने निकाला, अपना प्यार भरा ये संदेश हम तक पहुंचाया, इसलिए आपको और आपके पूरे परिवार को आकाशवाणी अयोध्या की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो आया है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, शिफा, शेफाली, आप सभी ने मिलकर ये संदेश लिखा है।
1: क्या कहते हैं ये?
0: आप लिखते हैं, हम आपके यहाँ के प्रसारित कुछ कार्यक्रम सुनते हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के लिए लाभप्रद होता है। हम आपके यहाँ के कुछ फरमाइशी कार्यक्रमों में भाग भी लेते हैं। कार्यक्रमों की बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी अयोध्या एवं सभी स्टाफ को धन्यवाद करते हैं।
1: धन्यवाद हम लोग भी करते हैं इनका। और देखिए, हम जो है मनोरंजन, स्वास्थ्य और ज्ञान, ये तीन जो है आकाशवाणी का मोटो है। हम इन तीनों को मिक्स करके ज्ञान को मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको, आपका ज्ञानवर्धन भी हो, आपका मनोरंजन भी हो। हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि आप इन चीजों को जान रहे हैं, फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि एक बार पुनः चर्चा हो जाए उस विषय पर।
0: अगला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है उन्हेल डिस्ट्रिक्ट उज्जैन, मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं भेरूलाल वाकतरिया धाकड़।
1: हाँ, भेरूलाल जी और उनके परिवार के लोग क्या लिखते हैं, क्या संदेश देते हैं?
0: आप लिखते हैं कि आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित तो कुछ कार्यक्रम हम अक्सर सुनते हैं। सुबह भक्ति संगीत का कार्यक्रम
1: जी,
0: प्रणाम अयोध्या, चिंतन, दिन में कुछ तुमने कहा के लिए फरमाइश भी भेजते हैं। कुछ तुमने कहा जैसा कार्यक्रम का नाम है, इसमें आजकल श्रोताओं की महत्वपूर्ण बातें पढ़ी नहीं जाती या श्रोता लिखते नहीं।

0: सिर्फ फरमाइश भेज देते हैं।
1: अच्छी बात है, आपने दोनों तरफ ध्यान दिया
0: जी,
1: कि हम पढ़ते नहीं या वो लिखते ही नहीं, तो दोनों होता है
0: जी। लोकगीत का कार्यक्रम भी बहुत पसंद आता है।
1: हाँ।
0: पिछले दिनों हमें अयोध्या आने का अवसर प्राप्त हुआ, सरयू स्नान और रामलला और हनुमान गढ़ी के दर्शन किए।
1: क्या बात है।
0: आकाशवाणी अयोध्या भी देखने की बड़ी तमन्ना थी, पर समय अभाव के कारण हम आकाशवाणी आ नहीं सके।
1: भैरूलाल जी, आप थोड़ा सा दूर हमसे रह गए, सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर दूर
0: जी।
1: आप आके वहां से गुजर गए, अगर आते तो क्या ही आनंद आता।
0: बिल्कुल। अगला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले मेरे श्रोता है दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा।
1: दिलशाद भाई क्या लिखते हैं?
0: लिखते हैं नमस्ते, स्वीकार करें।
1: भाई नमस्ते हम सब की तरफ से।
0: आगे लिखते हैं कि हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं।
1: क्या बात है।
0: अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और हृदय स्पर्शी एवं मनोरंजक लगता है। दिनांक 29 मई को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम अंगना के अंतर्गत बहुत ही अच्छी जानकारी मिली कि लू से कैसे बचें।
1: बिल्कुल।
0: और घरेलू नुस्खे सुने, इनको बहुत ही पसंद आए। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी अयोध्या केंद्र को बधाई। आपके केंद्र का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के अंतर्गत बहुत ही अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलते हैं
1: जी,
0: और प्रस्तुति भी बहुत ही सुंदर इनको लगती है। आकाशवाणी अयोध्या केंद्र को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। 30 मई को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम युवाड़ी के अंतर्गत प्रसारित साक्षी दुबे की वार्ता सुनी, अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक लगी। और 30 मई को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आशा भोसले को सुना, बहुत ही पसंद आया इनको। 30 मई को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम नारी जगत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर विशेष प्रस्तुति सुनी। बहुत ही ज्यादा
1: अच्छा लगा इनको।
0: हाँ, जानकारी मिली और इनको बहुत पसंद आया। और 30 मई को ही कुछ तुमने कहा भी इन्होंने सुना, इनको बहुत ही पसंद आया। 31 मई को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम खेल खिलाड़ी सरस्वती पाठक जी की प्रस्तुति थी और बहुत ही पसंद आया इनको, बहुत जानकारी उससे मिली
1: जी।
0: कुल मिला के इनको आकाशवाणी अयोध्या के सारे कार्यक्रम जो है वो काफी पसंद आते हैं।
1: दिलशाद भाई, आपने आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों को सुना, गुना और इतना दिल खोल के जो संदेश दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आपने आशा बता दिया कि आगे भी आपके खतों को हम, यानी आपके संदेशों की प्रतीक्षा आकाशवाणी अयोध्या को रहेगी।
0: अगला जो संदेश आया है वो बीकापुर अयोध्या धाम जिलेदार तिवारी ग्राम पंचायत सूरा सराय से आया है।
1: मैंने, ये हमारे पड़ोसी ही हैं जिलेदार।
0: लिखने वाले मैं श्रोता है काली सहाय तिवारी।
1: हाँ, काली भाई जी क्या लिखते हैं
0: जी? आप लिखते हैं कि आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं सर जी, जैसे सुर संगम प्रणाम अयोध्या, आपके संदेश, आपके गीत, बातें आसपास की, लोक रंग, हेलो अयोध्या, कुछ तुमने कहा, गीतांजलि, नारी जगत, युवाड़ी, लोक संगीत, श्याम सुहानी, गूंजे स्वर गांव के, किसानवाड़ी, गीत गुंजन, सभी कार्यक्रमों के नाम आप।
1: काली साहिब जी ने कुछ छोड़ा नहीं, सबको बता दिया कि हम सब सुनते हैं।
0: बिल्कुल, सारे कार्यक्रम इनको पसंद आते हैं और हम बराबर सुनते हैं।
1: तो लग गया लगता।
0: लिख रहे हैं सर जी, एक शिकायत है कि बातें आसपास की जैसे सातों दिन हुआ करता था पहले, वैसे ही फिर से कर दिया जाए, बस यही इतनी सी शिकायत है।
1: काली साहिब जी, आपकी शिकायत कहाँ, ये तो आपका प्यार है और आपका सुझाव है
0: जी।
1: और देखिए, जब हम कोई चीज परिवर्तन करते हैं बीच बीच में, तो उसके जगह पर कोई नई चीज लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज सातों दिन कर रहे हैं
0: जी,
1: अगर उसमें से हम 3 दिन कम करते हैं तो 3 दिन आप ही के लिए कुछ और चीज परोसने की कोशिश करते हैं। और फिर भी आप अगर चाहते हैं कि उसी तरह कार्यक्रम रहे, तो आपका सुझाव सर आंखों पर, आगे भी विचार करेंगे हम लोग इस पर
0: जी। अगला जो संदेश है वो रणजीत सिंह जी का आया है, गोरखपुर से।
1: रणजीत जी, देखिए नेहा, हमारे बहुत ही गंभीर श्रोता है
0: और बराबर आपके संदेश हमें मिलते रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लिखते हैं फेसबुक पर पोस्टर लगा आपकी बात कार्यक्रम का, 2 बार कमेंट किया लेकिन शामिल नहीं किया गया।
1: ओहो,
0: आपके संदेश तो निरंतर शामिल होते हैं कार्यक्रम में,
1: कुछ और गड़बड़ी हुई होगी
0: जी। कार्यक्रम इस पखवाड़े बहुत कम सुने हैं, यही वजह है कि आपने सुना नहीं,
1: पकड़ नहीं पाए
0: जी।
1: काम तो जरूर हुआ होगा लेकिन आप देख नहीं पाए
0: जी। हमने सुझाव दिया था कि एक ही फिल्म से और फिल्मी फ्राइडे, पुरानी फिल्मों से और गीत बहार कार्यक्रम शुरू करने के लिए। अब हमको उम्मीद नहीं है कि ये कार्यक्रम चालू होगा।
1: नहीं, ऐसा नहीं है
0: जी।
1: आपने सुझाव दिया और नोट किया गया
0: जी।
1: जैसे मान लीजिए घर में है, घर में हम सब लोग बैठे हैं और अचानक किसी ने कहा कि करेली की सब्जी खानी है
0: जी।
1: तो करेली की सब्जी खाने के लिए नजदीक के बाजार का इंतजार करना होगा,
0: पड़ेगा।
1: ऐसे ही कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जो बना हुआ है आप सटीक बदल दे। नया कपड़ा पहनने के लिए आपको खरीदना सिलाना पड़ता है, तब जाके नया कपड़ा पहनते। तो वैसे ही इस चीजों को नोट किया गया है, जब अवसर आएगा तो उसमें परिवर्तन और समायोजन किया जाएगा।
0: और कार्यक्रम पर भी चर्चा किए थे, जैसे जागो जिंदगी,
1: हाँ, जागो जी, चर्चा।

0: जागो जिंदगी तो मैंने बताया था कि दोबारा शुरू करने का समय नहीं है,
1: है।
0: उसका उसके लिए समय ही नहीं है
1: जी।
0: फिर कभी जब अवसर आएगा, बहुत उलट फेर जब होगा कभी, तो शायद उसको शुरू कर पाए। ठीक। और क्या कहा था इन्होंने?
1: जागो जिंदगी, स्वास्थ्य चर्चा, खेती की बातें और ग्राम जगत कार्यक्रम शुरू करने के लिए फरमाइश।
0: ग्राम जगत की जगह पर कृषि जगत कार्यक्रम चलता रहता है। अब वो पहले एक घंटे का कार्यक्रम होता था जिसको घटा करके आधे घंटे कर दिया गया है। अब वो आधे घंटे में ही जो भी कुछ समाजन है वो है, और जो स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम था वो जब ये चलता था उसी समय वो भी था, फिर कभी आगे चल के उसको रिपीट किया जाए।
1: बिल्कुल। और आगे लिखते हैं कि हो सके तो रविवार के दिन मनभावन कार्यक्रम और एक ही फिल्म से कार्यक्रम जरूर शुरू करें।
0: जरूर, हम लोग नोट करते हैं, आगे के परिवर्तनों में इसको शामिल करने की कोशिश करेंगे।
1: और बातें आसपास की कार्यक्रम जो पहले रोज आता था वो फिर से रोजाना

0: घंटे का कार्यक्रम होता था जिसको घटा करके आधे घंटे कर दिया गया है। अब वो आधे घंटे में ही जो भी कुछ समाजन है वो है, और जो स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम था वो जब ये चलता था उसी समय वो भी था, फिर कभी आगे चल के उसको रिपीट किया जाएगा।
1: और आगे लिखते हैं कि हो सके तो रविवार के दिन मनभावन कार्यक्रम और एक ही फिल्म से कार्यक्रम जरूर शुरू करें।
0: जरूर, हम लोग इसको नोट करते हैं, आगे के परिवर्तनों में इसको शामिल करने की कोशिश करेंगे।
1: और बातें आसपास की कार्यक्रम जो पहले रोज आता था वो फिर से रोजाना किया जाए, जिसमें बहुत सारी जानकारी हमें मिलती थी और गीत भी सुनने के लिए मिलते थे।
0: बिल्कुल रणजीत जी, आपके सुझाव सब नोटेड हैं। जिस समय इस पर विचार होगा कि क्या कुछ नया किया जा सकता है, समय उतना ही है, उस समय जरूर इसको सम्मिलित किया जाएगा, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें।
1: जी, शाम सुहानी कार्यक्रम का समय बढ़ाया जाए।
0: हाँ,
1: आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित सभी कार्यक्रम इनको बहुत पसंद आते हैं। हो सके तो पहली सभा में 5:51 से दोपहर 3 बजे तक, और शाम की 5 बजे से रात 9:30 बजे तक, और शेष समय में जो बाकी बचता है उसमें आप विविध भारती चलाएं।
0: बिल्कुल, तो हम लोग विविध भारती तो बहुत कम कर चुके हैं, और हमारी सभा एक ही है जो सुबह प्रारंभ होती है, और तीनों सभाओं का योग है एक साथ, रात के 11 बजे तक चलती है, 11:10 तक।
1: 18 मई को इन्हें अमरजीत सर द्वारा कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे, और इसी दिन लोक संगीत कार्यक्रम और आपकी बात कार्यक्रम भी इन्होंने सुना, इनको बहुत पसंद आया। 20 मई को अंगना कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और 24 मई को वंदना सिंह जी द्वारा अंगना कार्यक्रम इनको बहुत पसंद आया। 25 मई को नेहा माम मतलब मेरे द्वारा की गई दोपहर की सभा इनको बहुत अच्छी लगी। इसी दिन शाम में लोक संगीत और रात में गीत गुंजन कार्यक्रम भी इनको बहुत पसंद आया, और हेलो अयोध्या की जो प्रस्तुति थी वो भी इनको बहुत पसंद आया।
0: यानी ढेर सारे कार्यक्रमों को इन्होंने सुना, गुना और अपनी बातों को लिखा। तो आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम इनको धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इतना समय, अपना वैल्यूबल समय आकाशवाणी को दिया और अपना प्यार इस तरह से हम तक पहुंचाया। और मैं देख रहा हूं कि आपके पास अभी ढेर सारे संदेश निहारे गए हैं, लेकिन घड़ी बिल्कुल इजाजत नहीं देती है, तो हम लोग इन सबको समेटते हैं, अगले कार्यक्रम तक के लिए श्रोताओं से लेते हैं विदा और कहते हैं नमस्कार।
2: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात, हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.9 MHz पर। आइए अब सुनते हैं सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
4: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800037222।
3: हेलो अयोध्या सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं इस कार्यक्रम में आपके साथ सूरज सिंह। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डायल करें अपना चिर परिचित नंबर 7376804090।

0: ये गाने के अलावा क्या पसंद है आपको? अच्छा,
1: अरे सर, गाना गाना ही हमको ज्यादा पसंद है, और वो भी पुरानी फिल्म के। जी
0: पुरानी फिल्म के, मतलब 70 से पहले का?
1: जी जी सर,
0: अच्छा,
1: वो सब गाने बड़े अच्छे होते हैं सर।
0: तो इसीलिए आपने ये महेंद्र कपूर की आवाज में गाना सेलेक्ट किया है। ठीक है, आपको हमराज फिल्म का गाना सुना दे रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज में। आकाशवाणी आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ, सूरज।

0: हेलो।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते सर, कहाँ से कॉल किया, नाम बताइए अपना।
1: जी सर,
0: जी कहाँ से कॉल किया, अपना नाम बताएं।
1: जी मैं अर्जुन कुमार सोनकर, छोटा रमना, अयोध्या।
0: जी अयोध्या से बोल रहे हैं अर्जुन जी, क्या करते हैं।
1: जी मैं दुकान करता हूँ पान की।
0: जी कार्यक्रम तो रेडियो सुनते हैं दुकान पर अपने।
1: प्रोग्राम इतने अच्छे अच्छे आते हैं, क्या बताएं हम आपसे।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि
1: जो स्टेशन चलता रहता है दुकान के ऊपर सर।
0: जी अच्छा, वही मतलब हम पूछना चाह रहे थे कि दुकान पे आप मतलब प्रोग्राम हमारे सुनते हैं।
1: हाँ सर ठीक, सुबह 8 बजे से
0: जी
1: शाम 8 बजे तक।
0: रेडियो पे सुनते हैं, प्रॉपर रेडियो है या मोबाइल पे सुनते हैं।
1: रेडियो पे सर, रेडियो पे, मोबाइल पे नहीं सुन पाता हूँ मैं, रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो रखा है आपने।
1: हाँ रेडियो मैं दो रखा हूँ, एक घर पे है एक दुकान पे है सर।
0: जी बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। गीत कौन सा आज सुनेंगे कार्यक्रम में।
1: जी
0: गीत कौन सा सुनेंगे आज कार्यक्रम में।
1: फिल्म हमराज, पुरानी वाली
0: हमराज का।
1: ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के।
0: जी और क्या करते हैं।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: हेलो
3: हेलो सर, नमस्ते।
2: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कहाँ से कॉल किया सर?
3: सर मैं जिला बस्ती से तहसील आ रही है तिवारी से तौहीद अली बोल रहा हूँ।
2: दिलीप?
3: तौहीद अली।
2: तौहीद अली बोल रहे हैं
3: जी सर।
2: कैसे हैं तौहीद जी?
3: सर बस आप सबकी आशीर्वाद है, आप पूरी आकाशवाणी की टीम कैसे है सर?
2: सब लोग बढ़िया, यहाँ भी बढ़िया, सब ठीक ठाक।
3: बहुत खुशी की बात है सर।
2: सब ठीक है, आज गीत कौन सा सुनेंगे कार्यक्रम में?
3: सर आज हमें गाना सुना दीजिए ओ राजा बाबू का।
2: राजा बाबू का कौन सा गाना सुनेंगे राजा बाबू से?
3: वही

0: सरकार ने खटिया जा रहा।
1: राजा बाबू तो नहीं है हमारे पास,
0: नहीं है।
1: नहीं, राजा भैया है।
0: तो फिर दूल्हे राजा का सुना दीजिए।
1: दूल्हे राजा से कौन सा गाना?
0: अखियों से गोली मारे।
1: ठीक है, ये गीत आपको सुनवा दे रहे हैं। आकाशवाणी में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
0: नमस्कार सर।
1: नमस्ते।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: हेलो, हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: जी सर, नमस्ते।
1: नमस्ते, अपना नाम बताएं और कॉल कहाँ से किया?
2: जी,
1: अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल किया आपने?
2: जी, हमारा नाम हरि भजन है, हम देवड़ी बाजार से बोल रहे हैं।
1: हरि भजन, देवड़ी बाजार
2: जी,
1: अयोध्या
2: जी।
1: क्या करते हैं?
2: जी सर,
1: क्या करते हैं आप?
2: सर क्या करेंगे, क्या यहाँ हम तो हनुमान गढ़ी मतलब वो कीर्तन होता है वगैरह इसी में आते रहते हैं।
1: अच्छा अच्छा, गीत कौन सा सुनेंगे आज कार्यक्रम में?
2: जी,
1: गाना कौन सा आज सुनेंगे?
2: गाना कौन सुनना है
1: जी?
2: चोट लगी।

0: किसको तो दर्द मुझे होता है सर।
1: फिल्म का नाम बताइए, गाना नहीं बताइए, फिल्म का नाम बताइए।
0: फिल्म का नाम राजा।
1: राजा फिल्म से
0: जी, राजा फिल्म का नाम का ये गाना है। और सर कैसे हो?
1: सब बढ़िया है।
0: अरे अमरजीत सर से कभी बात करा दे सर।
1: अरे बिल्कुल करिए, आप रोज प्रोग्राम में जब भी वो आते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं।
0: हाँ सर, उनको तो कभी मुलाकात कर दी है सर। वहाँ पर कहाँ पर मिलेंगे आप लोग?
1: आकाशवाणी अयोध्या में आप मिल सकते हैं आके।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: किधर पड़ेगा सर
1: आकाशवाणी अयोध्या? किधर पड़ेगा?
0: हाँ सर
1: बेगमगंज गढ़ैया, इसका पता है, धारा रोड पे पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी जी, आप गाने के बोल क्या बोले हैं राजा फिल्म से?
0: चोट लगी तुझको दर्द मुझे होता है।
1: इस बोल से तो इसमें कोई गाना नहीं है।
0: चोट लगी तुझको दर्द मुझे होता है।
1: चलिए ठीक है, आपको इसी फिल्म से एक गाना कोई सुना दे रहे हैं, ठीक है
0: सर? जैसे सर ये पहला गाना वही है।
1: चलिए तो वही सुना दे रहे हैं।
0: जी जी
1: ठीक है,
0: नमस्ते सर।
1: नमस्ते, आकाशवाणी आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।

0: सब से
1: संभाल। हेलो,
2: हेलो सर, नमस्ते।
1: नमस्ते, कैसे हैं? नाम बताएं अपना और कहां से कॉल किया?
2: मेरा नाम राकेश है।
1: जी राकेश जी, कहां से कॉल किया?
2: ग्राम गढ़ौली पोस्ट खंडाता कुमारगंज अयोध्या से।
1: अयोध्या से, क्या करते हैं राकेश जी?

0: Dar cu cine e?
1: Program suntem, mare? Care program suntem, mare?
0: Hello?
1: जी हम कह रहे हैं प्रोग्राम सुनते हैं हमारे
0: जी जी सुनते हैं
1: आज कौन सा गाना सुनेंगे
0: जी मुझे जीनियस फिल्म का सुना दी
1: जीनियस फिल्म से कौन सा गाना
0: तेरा फितूर से
1: अच्छा तो गाने के अलावा क्या पसंद है आपको
0: जी
1: कह रहे गाने के साथ साथ क्या पसंद है
0: जी बहुत पसंद है जो
1: जी हेलो
0: जी
1: इससे पहले कभी कॉल किया आकाशवाणी में
0: जी जी किया था
1: बात हुई थी
0: जी हुई थी बात मैम से हुई थी मैम से
1: जी प्रोग्राम कौन कौन से सुनते हैं हमारे
0: जी हेलो फरमाए सुनते हैं
1: और
0: जी सर होते हैं जो 3 बजे होते हैं जो प्रोग्राम और दोपहर को सुनते हैं
1: ठीक है आपको सुनवा दे रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना फिल्म जीनियस से आकाशवाणी में आपने कॉल किया बहुत बहुत धन्यवाद सुनिए अपनी पसंद का ये गाना

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: संजय गुप्ता बोल रहे हैं, अयोध्या से।
2: संजय गुप्ता अयोध्या से बात कर रहे हैं। नमस्ते, कैसे हैं संजय जी?
3: ठीक है सर, हम संजय गुप्ता बोल रहे हैं।
2: जी जान गए आप संजय गुप्ता बोल रहे हैं, आपने बताया। जी जी, कैसे हैं हम पूछ रहे हैं।
3: जी हैदर बोल रहे हैं।
2: हाँ हम पूछ रहे हैं आप कैसे हैं।
3: ठीक है सर, हमारी एक बात है आपसे।
2: जी बताएं।
3: अरे सर, हमारे जो बच्चे खो गए थे, बात जिस साल हो गया, शुभम नाव सूर्या नाम है।
2: जी
3: हैदर से बोल रहे हैं सर।
2: जी जी जी।
3: हाँ, जो तो बच्चे गायब हो गए हैं सर 2005 में, 21 साल हो गया, सूर्या शुभम नाम था।
2: जी जी।
3: हाँ तो वही हमने कहा कि अब कहाँ कहाँ नहीं है। और सब ठीक है सर?
2: हाँ सर बढ़िया है।
3: उनके हाथ में गुदा गुदान है शुभम के हाथ में।
2: जी अगर आप इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो हमारे यहाँ से खोए व्यक्ति की सूचना जाती है, हम उसमें उनका अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ठीक है।
3: हाँ सर, हमें पिक्चर गाना सुना लीजिए सर, सन्यासी।
2: सन्यासी फिल्म से सुनना है
3: जी। नमस्ते सर
2: जी, सन्यासी फिल्म से कौन सा गाना सुनेंगे?
3: चल सन्यासी मंदिर में।
2: जी ठीक है, आपको सुनवा देंगे गाना। आकाशवाणी में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद
3: जी। नमस्ते सर।
2: नमस्ते।

0: हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: 7376840 90 डायल करके आप कर सकते हैं हमसे बातें, सुन सकते हैं अपने पसंद का गाना। कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या। हेलो
2: नमस्ते सर।
1: नमस्ते, अपना नाम बताइए।
2: सर स्वाति सिंह बात कर रहे हैं, अंबरपुर ननकापुर गोंडा से।
1: स्वाति सिंह गोंडा से बात कर रही हैं, कैसी हैं आप?
2: सर ठीक है, आप कैसे हैं?
1: यहाँ भी सब बढ़िया है। तो स्वाति जी क्या करती हैं?
2: सर घर पे रहते हैं, घर का काम करते हैं, उसके बाद में और रेडियो सुनते हैं।
1: जी तो आज क्या सुनेंगी रेडियो में, कौन सा गाना सुनेंगी?
2: सर आज उनको जाबाज फिल्म का सुनवा दीजिए, तेरा साथ है कितना प्यारा।
1: जाबाज फिल्म से?
2: हाँ सर।
1: जाबाज फिल्म तो नहीं है हमारे पास, जाबाज नहीं है हमारे पास, और कोई गाना बताए।
2: सर उसका सुनवा दीजिए, हाथी मेरे साथी फिल्म का सुनवा दीजिए।
1: जी हाथी मेरे साथी फिल्म से कौन सा गाना सुनेंगी?
2: सुन जाए ठंडी हवा, थम जाए काली घटा।
1: ठीक है स्वाति जी, आपको ये गाना सुनवा दे रहे हैं। आकाशवाणी में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अभी पसंद का ये गाना।
2: जी सर थैंक यू।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते। नाम
1: अय्यब
0: बताइए।
1: आपसे अंगद मिस्त्री बोल रहे हैं सर।
0: अंगद जी बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: अय्यबाद अयोध्या से। आपका
0: जी कैसे हैं अंगद जी?
1: आशीर्वाद है सर, बड़े
0: जी आकाशवाणी में
1: दिन बाद फोन लगे हैं आपके पास।
0: कब फोन किया था इससे पहले?

0: इससे पहले लगा था 5 महीने पहले।
1: अरे वाह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने तो बहुत मौका दिया हमारे बाकी कॉलर्स को। यहाँ तो लगातार कॉल्स करते हैं लोग, ठीक है, लेकिन आपका काफी अंतराल हो गया। लगा रहे थे रोज फोन आप?
0: नहीं, कभी कभी लगाते, जब बेस्ट जाता छोड़ देते हैं।
1: जी जी जी, कुछ लोगों का रोज लग जाता है लगभग। कौन सा गाना सुनेंगे आज कार्यक्रम में?
0: सर गाना का जो है बोल पता है, लेकिन फिल्म का नाम नहीं पता।
1: नहीं, फिल्म का नाम तो बताना पड़ेगा, वैसे खोजना बहुत कठिन है यहाँ पे।
0: यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कितनी हसरत है तुमसे दिल लगाने की, बस ये गाना।
1: फिल्म का नाम बताइए सर।
0: फिल्म का नाम तो सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं।
1: चलिए अच्छा, हम कोशिश करते हैं थोड़ी सी,
0: बाकी सुना दीजिए, देख लीजिए जैसे हो पाए आपसे।
1: तो प्रोग्राम के अलावा क्या पसंद है आपको?
0: प्रोग्राम दिन में भी सुनते हैं सर, अच्छे लगते हैं बहुत सारे।
1: तो सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या सुनते हैं या
0: हैं।
1: जी
0: जी,
1: तो रेडियो पे सिर्फ आकाशवाणी अयोध्या सुनते हैं या कोई और भी?
0: सारा प्रोग्राम सुनते हैं जब जैसे समय मिलता है सर, हम ट्रक मैकेनिक हैं, जब खाली होते हैं तब सारे प्रोग्राम सुनते हैं।
1: अच्छा
0: जी, बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी जानकारियां मिलती है।
1: चलिए ठीक है, आपका गाना हमने खोज लिया है, सैनिक फिल्म का ये गीत है, साधना सरगम और कुमार सानू की आवाज में, ठीक है जी। आपको ये गीत सुनवा दे रहे हैं, आकाशवाणी में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाना सुनिए अपनी पसंद का।

0: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
1: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध

0: ना करें।
1: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुनें।
0: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
1: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आंकें, अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
0: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
2: हेलो हेलो, हाँ
3: सर, नमस्ते।
2: नमस्ते, क्या नाम है बेटा?
3: सर आदित्य।
2: आदित्य?
3: हाँ।
2: कितने बड़े आदित्य, कितने साल के हैं?
3: आठ।
2: आठ साल के हैं?
3: यस सर।
2: कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
3: थ्री में।
2: थ्री में, अरे वाह। तो कहाँ से कॉल किया आदित्य ने आपने?
3: बड़ी मुझानिया।
2: अरे वाह, इससे पहले भी कभी कॉल मिलाई है आकाशवाणी में कि पहली बार किया है?
3: सर जी एक बार और लगा था।
2: आप ही बात किए थे?
3: यस सर।
2: अरे वाह, तब तो आप बड़े होशियार हैं। गीत कौन सा सुनेंगे आज कार्यक्रम में?
3: दिलवाले।
2: दिलवाले फिल्म से। हेलो।
3: हाँ सर,
2: दिलवाले फिल्म से सुनेंगे?
3: यस सर। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।
2: अच्छा, यही गाना सुनना है?
3: यस सर।
2: ठीक है, पढ़ाई के साथ क्या अच्छा लगता है आपको?
3: ठीक लगता है।
2: पढ़ाई के अलावा खेलना अच्छा लगता है?
3: यस सर।
2: कौन सा खेल खेलते हैं?
3: गेंद
2: खेल लेते हैं। अच्छा चलिए, ठीक है, पढ़िए खेलिए, खूब अच्छे से एंजॉय करिए, और आपके लिए गाना हम सुनवा दे रहे हैं दिलवाले फिल्म से। ठीक है, आकाशवाणी में कॉल किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्ते सर।
2: नमस्ते।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ।
1: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
0: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
1: जी हाँ, और वो है योग।
0: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
1: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
0: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
1: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
0: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
1: योग करिए, निरोग रहिए।
2: हेलो,

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: नमस्ते, कहाँ से कॉल किया आपने?
1: हम नाका हनुमानगढ़ी से बोल रहे हैं, मरी माता मंदिर के चंचल पुजारी दास बोल रहे हैं।
0: जी स्वागत है सर आपका।
1: जी
0: स्वागत है।
1: जी जी आप हम चाहते हैं हमारे माता जी के दरबार में कल प्रसाद वितरण, आप आइए, आपका स्वागत है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल आएंगे।
1: कल 12 बजे है, आप आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, आप आइए।
0: जी बिल्कुल, आकाशवाणी की तरफ से। जी
1: मरी माता मंदिर वही नाका पर है, हनुमानगढ़ी पास रामनगर चौराहा पर है।
0: जी जी जी
1: जी।
0: तो आज गाना कौन सा सुनेंगे आज कार्यक्रम में आपने कॉल किया?
1: हम चाह रहे हैं एक भक्ति गाना सुना दीजिए, क्रांति पिक्चर के,
0: क्रांति फिल्म से
1: जो माता जी के गाना है उसमें आप सुना दीजिए, और फिल्म कह रहे हैं आप आइए, कल आपका स्वागत रहेगा।
0: ठीक है, आकाशवाणी में बिल्कुल हम कोशिश करेंगे वहां पहुंचने की। आकाशवाणी में
1: दस मिनट में आइए बस।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर,
1: बस माता जी के दरबार में आइए, आपका दर्शन हो जाए।
0: जी जी बिल्कुल,
1: बस गाना सुना दिया कलाम की।
0: ठीक है, आपको क्रांति फिल्म का ये गाना सुना दे रहे महेंद्र कपूर की आवाज में।
1: हाँ, महेंद्र कपूर का माता जी का।
0: जी आकाशवाणी में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो अयोध्या से अपने रेडियो साथी सूरज सिंह को अब दीजिए अनुमति। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें तकनीकी रूप से सहयोग दिया अरविंद कुमार जी ने।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM एंड 101.9 MHz पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और उसके ठीक बाद अंग्रेजी में, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitrakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN Nair ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में